0: नानक फिके बोले तन मन फिका हो फिको फिका सदिया फिके फिकी सो फिका दरगाह सटिया मोथो का फिके पाहे फिका मूर्ख आखिए पाणा ले सजाहे महला पहला
1: अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैला सर तीरे जे नावे उतरे नाही मैं जिन पट अंदर बाहर गुदरते पले संसार तिने हो लगा रब सेती देखने विचार रंग हसै रंग रोवै चुप भी कर जाहे परवाह नाही किसै केरी बाज सचे ना दरवाज़ पर खर्च मंगा जब्बा दे ता खाए दीवारे को कलमे का हमात मेल दर ले लेखा पीड़ छुट्टे नानक

जिसके जी प्राण है क्यों सह मनम सारी है, अपन हथी अपना पे का सवारी है। हसा महला चौथा जिन्ना।

साहिब से ती हुक ना चले कहीं बने अरदास कूक मन कूड़ हो वे नानक सिफत विकास महला।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮਨੋਜ। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैंबर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
2: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के रिशित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाक

0: कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 854 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडी प्रोग्राम वेव्स ऐप राही ते न्यूज़ ऑन एयर ते सुन सकते हो। इस वेले साडी स्टूडियो दी घड़ी मुताबिक सवेर दे 6:05 हो रहे हैं। तो आओ सुनते हैं ज्ञान अमृत।

हुने तुसे सुनिया ज्ञान अमृत। आओ हुन सरवन करते हैं पगती संगीत का प्रोग्राम आराधना।

हुने तुसे सर्वन कार्य से भगती संगीत का प्रोग्राम आराधना मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से ये आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। तुसी साड़ी प्रोग्राम वेव्स ऐप राही ते न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते सुन सकते हो। इस वेले साड़ी स्टूडियो की घड़ी मुताबक सवेर दे 6:30 हो रहे ने, ते आओ हुण तुहानू सुनाने आ सी प्रोग्राम खेतीबाड़ी।

एक दिन अवध नरेश महाराज दशरथ दर्पण में अपनी छवि देखते हुए राजमुकुट को व्यवस्थित कर रहे थे कि कनपटी पर के बाल सफेद दिखे, मानो बुढ़ापा ये संदेश दे रहा हो कि हे राजन, ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज पद देकर अपने जन्म और जीवन को सार्थक करने का समय आ गया है। महाराज ने अपनी अभिलाषा कुलगुरु वशिष्ठ मुनि को जा सुनाई। उनकी मंगल कामना तथा आनंददायी वाणी सुनकर मुनिवर अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र ही इस मंगल कार्य के लिए आवश्यक प्रबंध कीजिए। श्री राम के अभिषेक के लिए शुभ दिन देखने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। ये संवाद सुनकर मंत्री सुमंत्र तथा राजप्रसाद के सेवकगण ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे को जल मिल गया हो। महाराज का आदेश पाकर मुनिवर वशिष्ठ द्वारा बताई गई सामग्री का प्रबंध किया गया। सभी तीर्थों की जल, औषधि, मूल, फल फूल, चमर, मृगछाला, नाना प्रकार के वस्त्र, मणियां तथा अन्य वस्तुओं की व्यवस्था की जाने लगी।

हुने तुसी सरवन कर सी मानस गान दा 133वां भाग मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ थे। ए आकाशवाणी दा जलंधर की

आओ हुण तुहानूं जानकारी दीदीए अज रात तक प्रसारित किए जाण वाले प्रोग्राम से। सवेरे 7:02 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम सोहणी सवेर। 8:40 ते तुसी पंजाबी फिल्मी गीतां दा प्रोग्राम सुनोगे महक पंजाब दी। सवेरे 9:02 ते तुसी सुनोगे शास्त्रीय संगीत दा प्रोग्राम सुर साधना। इस प्रोग्राम च अज तुसी कलाकार सहजदीप सिंह वालों सितार वादन राग मियां की तोड़ी सुनोगे। इस उना नाल तबले ते संगत करेंगे मोहनदीप बावरा। 9:30 तुसी सुनोगे गजलां। सवेरे 10:02 ते तुसी सुनोगे साडा टेलीफोन बेस्ड प्रोग्राम हालू फरमाइश। तमक जलंधर पेंदी प्रोग्राम पेश किया जाएगा 11:05 ते 12:05 ते समा रहेगा जी प्रोग्राम वसदे वेड़े दा। इस प्रोग्राम च अज तुसी मेहमान ब्रूहां तो विजयपाल सिंह ते सिंधु राणा वालों की गलबात सुनोगे। उस तो बाद फौजी वीरानी प्रोग्राम दोपहर 1:15 पेश किया जाएगा। बाद दोपहर 2:30 तुसी सुनोगे प्रोग्राम रंगली धरती। इस प्रोग्राम च अज तुसी भजन लाल जैला ते साथियां दे गीत सुनोगे। साडी दूजी सभा च 4:02 ते तुसी सुनोगे सदा बहार गीत। शाम 4:30 असी तुहानू लै चलांगे गुरु नगरी अमृतसर, जिथों तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे। शाम 5:30 तुसी सरवण करोगे गुरुवाणी विचार। देहाती प्रोग्राम होवेगा जी शाम 6:30 ते इस विच अज बरसात च सब्जियां विषय ते जानकारी दित्ती जावेगी ते जानकारी देंगे डॉक्टर दिलप्रीत तलवार। शाम 7:40 ते तुसी सुनोगे विविधा हिंदी टॉक। रात 8:00 तुसी सुनोगे साडा इवनिंग शो जिंदगी हसीन है।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से ये आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। इस वेले साड़ी स्टूडियो की घड़ी मुताबिक सवेर के 6:07 बज रहे हैं। हुण पेश ने अज दियां मुख खबरां। भारत ने ओमान के साहिल नेड़े व्यापारक जहाज़ GFS गलेक्सी ते हुए हमले की सख्त निखेपी की। खेतर विच व्यापारक जहाज़ा ते लगातार हो रहे हमलों ते चिंता प्रगटाई है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह अज गुजरात के गांधीनगर विच खेतीबाड़ी उपज बाजार कमेटी के अमृत महोत्सव दौरान नवे सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि चौगिरदी की रक्षा अते एक निरंतर रहन योग भविख नू यकीनी बनाने लई रुख लाउणा बेद महत्वपूर्ण है। केंद्रीय व्यापार अते सनअत मंत्री पीयूष गोयल यूरोप नाल भारत की आर्थिक भाईवाली नू होर मजबूत करन दे उद्देश नाल अज तो 17 जुलाई तक स्पेन बेलजियम अते फिनलैंड दे दौरे ते होणगे। अमरीका बरतानिया अते 12 होर पछमी अते एशियाई देशां ने 2016 दे विचौलगी फैसले दे आधार ते दक्षणी चीन सागर विच चीन दे व्यापक दावियां नू गैर कानूनी ऐलान दिता है। सरकार ने सोशल मीडिया ते चल रहे दावे दा खंडन कीता है कि इथनॉल वाले पेट्रोल नाल वाहन दे इंधन नू टैंक विच समस्या पैदा हो सकती है। केंद्रीय किरत अते रुजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडविया पलके देश भर विच करीब 668 करोड़ रुपए की लागत वाले 7 मुलाजम राज बीमा यानी कि ESI सेहत योज प्रोजेक्टा का उद्घाटन करेंगे। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि सिक्ख्या का असल उद्देश राष्ट्र के विकास विच सरगर्म योगदान पाने वाले नागरिक तैयार करना है। उन्होंने कल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की 51वीं कॉन्वोकेशन 456 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान कीतियां। पंजाब च SIR प्रक्रिया के हिस्से वजों पंजाब भर के वोट केंद्रां ते लाए गए 2 रोज़ा विशेष कैंपा दौरान 30 लाख तो वध वोटर ने अपनी गणना फॉर्म भरे। पंजाब के कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने एक विशेष समारोह च जिला पठानकोट के वख वख वर्गों नाल संबंधित करीब 150 लाख पात्रियों नू नवे राशन डिपो अलॉट किए। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक पंजाब समेत देश के उत्तरी हिस्सों में बारिश की पेशनगोई की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सैमीफाइनल मुकाबले तय हो गए ने। फ्रांस का स्पेन नाल अते अर्जेंटीना का इंग्लैंड नाल मुकाबला होगा। ऐसन अज दियां मुख खबरां।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले साड़ी स्टूडियो दी घड़ी मुताबक सवेर दे 7:04 हो रहे ने। प्रोग्राम सोनी सवेर तों बस थोड़ा जिहा इंतजार होर।

अरिजीत सिंह दी आवाज़ च तुसी सुन रहे सी जी गीत। दोस्तों असी गल कर रहे सी मौसम बारे। इस वेले मानसून दा मौसम चल रहा है ते बारिश अपने नाल ठंडक ते ताजगी तां लियांदी है, पर इस मौसम विच सानू सेहत दा भी खास ध्यान रखना पैंदा है जी। बरसात दे दिनां च जेकर असी गल करिए दोस्तों, तो डेंगू ते मलेरिया वर्गियां जिहड़ियां बीमारियां ने उहदा खतरा भी वध जाता है, क्योंकि मच्छर साफ या खड़े पानी च बहुत जिहड़ा है, खास तौर पर डेंगू मच्छर है, वह बहुत तेज़ी नाल पैदा हुंदा है। तो इसलिए अपने घर के आने दुआले तुसी ये कोशिश करनी है कि कितें भी पानी इकट्ठा नहीं होण देना, खास तौर पर जिहड़े कूलर ने, गमले ने या फिर टायर है कितें आस पास तुहाडे पानी वाले बर्तन ने, उन्होंने समय समय तो तुसी साफ करते रहना है, पानी इकट्ठा नहीं होण देना। जदों भी घर तो बाहर तुसी जाना है, पूरे बांह दे कपड़े जिहड़े ने तुसी पाने ने, ते नाल दे नाल मच्छरां तो जिन्ना हो सकता है दोस्तों बचाव रखना है, ते क्रीम या फिर रिपेलेंट दी जिहड़ी है ना वो वरतों करनी है, क्योंकि जिहड़े एक्सपर्ट्स ने वो अक्सर यह गल कहिंदे ने कि यह जिहड़ा मानसून दा जिहड़ा हुण है मौसम चल रहा है, इस विच डेंगू होण दा खतरा बहुत ज़्यादा वध जांदा है। ते इहदे जेकर असी सिमटम्स की गल करिए, ते जदों किसी नूं लगन लगे कि तेज़ बुखार है, तेज़ सिर दर्द है या फिर होर कई जिहड़े अजिहे सिमटम्स ने वो तुहानूं लगते ने, ते तुरंत सैल्फ मेडिकेशन अक्सर जिहड़े लोग ने ना दोस्तों अपने आप ही दवाई लैन लग पैंदे ने, पर कोशिश करनी है कि डॉक्टर नाल ज़रूर कंसल्ट करना है, ते फिर जिहड़ी है ना वो मेडिकेशन वल तुसी अग्गे वधना है। ते दोस्तों इस मौसम च खाण पान दा जिहड़ा ना वो भी खास ध्यान रखना है, कोशिश करो कि घर दा जिहड़ा ताज़ा ते गर्म भोजन ही तुसी खाओ। हरियां सब्जियां, मौसमी जिहड़े फल ने, दाल है, वाइटामिन सी जिहड़ियां भरपूर वाइटामिन सी वाली जिहड़ी चीज़ां ने जिवें कि नींबू हो गया, आंवला हो गया, यह अपनी खुराक च तुसी शामिल करो, तां जो शरीर दी जिहड़ी रोग प्रतिरोधक समर्था है ना, जिहड़ी साडी इम्यूनिटी है वह मजबूत होवे। बाहर दा कटिया होया जिहड़ा फल है या फिर खुला खाना है या फिर सड़क किनारे मिलन वाला जिहड़ा भोजन है ना, उन्हूं जिन्ना हो सकता है दोस्तों उन्हूं अवॉइड करो इन्हां दिनां च। नाल ही पानी हमेशा साफ ते उबलिया या फिर फिल्टर वाला ही जे तुसी पीओ, तां जो इस मौसम च असी मौसम नूं इंजॉय भी करिए ते नाल दे नाल सेहतमंद भी रह सकीए। तो दोस्तों प्रोग्राम सोहनी सवेर चल रहा है, तो सोहनिया सोहनिया गल्लां हो रही ने, ते जदों सोहनिया सोहनिया गल्लां होण ते गल यह भी एक बनती है कि वेला जो मर्जी होवे, हुण जिवें पूरे साल च मौसम जिहड़ा है वो हर रुत्त लै के आंदा है, उसे तरह साडा जीवन है, कदे सुख आंदा है कदे दुख आंदा है दोस्तों, पर फर्क सिर्फ इन्ना है कि असी अपनी जिंदगी नूं किवें बिता रहे हाँ, किवें इहनूं गुजार रहे हाँ, वो साडे ते डिपेंड करता है, खुशी नाल कि गमी नाल। पर कोशिश करो कि खुश रह के इस जीवन नूं असी बतीत करिए। अगला गीत प्रोग्राम च मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ च बहुत सोहना गीत है, इंजॉय करो।

बिल्कुल जी, दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। ए जिहड़े सुख ते दुख है ना दोस्तों, ए साडे जीवन दा एक पार्ट ने। असी इहनां दे नाल ही अगे वधना है ते इहनां को सिखदे सिखदे ही अगे वधना है। बहुत सोहणा गीत मुहम्मद रफ़ी दी आवाज़ 'च तुसीं सुन रहे सी दोस्तों। हुण एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी तुहाडे नाल असीं सांझी करन जा रहे हाँ, जो है जी कि अजकल असी सारे सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया च जदों असी फोन ते कुछ स्क्रॉलिंग कर रहे होंने कि किन्ने सारी वीडियोज़ आ रही होंदिया ने, चाहे वह कोई भी प्लेटफॉर्म हैगा, चाहे वह फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, असी बहुत सारे वीडियोज़ जड़े है वह देखते हाँ, तो कई बार साढ़े अगे ना एड्स आ जाने ने। बहुत सारी जड़े असी देखते हाँ कि कई बारी जो भी असी वीडियो देख रहे होंने उस दौरान कई एड्स जिहड़ियां ने वो लगियां हुंदियां ने, पर उहदे विच ही ना वॉच ते वॉच एंड अर्न ऐप्स की जिहड़ियां ने ना वो ऐड आ रही हुंदियां ने। यानी कि तुसी वो कहिंदे ने तुहानू कि तुसी ऐड देखो ते नाल दे नाल तुसी पैसा कमाओ, पर वीडियो देखो ते छोटे छोटे ऑनलाइन टास्क जिहड़े ने वो पूरे करन दे बदले वो दावा करदे ने कि तुहानू असी पैसे देवांगे। पर दोस्तों अजकल असी जानदे हां कि जिवें पहला हुंदा सी कि बहुत ज़्यादा चोरी हो गई, लुट हो गई, वो हाले भी हो रही ने, पर ऑनलाइन भी यह सब कुछ चल रहा है। तो वो दावा करते ने जिहड़े साइबर जिहड़े फ्रॉड्स हो रहे ने, साइबर क्रिमिनल्स ने, वो कहिंदे ने कि पार्ट टाइम का लालच दिया जा दिता जाता है, तो कई जिहड़े स्टूडेंट्स ने या फिर जिहड़े अजकल दे बच्चे ने वो इन जिहड़े साइबर क्रिमिनल्स ने जिहड़े हैकर्स ने उन्हां दे जाल च जिहड़ा ना वो फस जाते हैं। पर

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक

0: पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
2: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिस कर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्यवाही को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
3: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में

0: आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
2: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो AI आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री देहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के संस्करण का
3: MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप्स, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपए, राजगीर के लिए 4000 रूपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपए और कैमूर के लिए 6000 रूपए टिकट को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
0: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा कि की क्षमता को और कम

जोर कर रहा है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद ऐसे नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का

0: मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता सिनर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। अपर सचिव वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और
1: ऑफ हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के अखबारों के हॉर्मूज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नवभारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, एक लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का एसआईआर ब्यौरा अनिवार्य। दैनिक जागरण के अनुसार, मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। 2 न्यू एंटी क्राइम लॉज पास्ड बाय वेस्ट बंगाल असेंबली कम इनटू फोर्स इन द स्टेट टुडे। ISRO successfully carries out 3 major tests of Gaganyaan crew module systems. 5 Indian students win gold medals at 56th International Physics Olympiad 2026. India secures world number 1 rank jointly with other countries. IMD forecasts heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during next 2 to 3 days. US launches fresh strikes on Iran. And Yannick Sinner beats Alexander Zverev to retain Wimbledon men's singles title. And now the news in detail. In West Bengal, 2 new anti-crime laws come into force in the state today. State Governor Arun Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti-social activities. In June this year, the Assembly passed the stringent anti-crime bills, the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill 2026 and

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन पेश करन जा रहे हैं पंजाबी फिल्म म्यूजिक दा प्रोग्राम महक पंजाब दी। इस प्रोग्राम च सब तो पहला गीत असी तुहानू सुनान जा रहे हैं फिल्म जिन्हें मेरा दिल लुटिया चों दिलजीत दोसांझ दा गाया गीत।

0: प्रभजोत जी, मैं सुनिया वसदे वेड़े प्रोग्राम च कुछ तब्दीली हुई है।
1: बिल्कुल सुखजीत जी, तब्दीली तो हुई है।
0: ओ केड़ी तब्दीली है भाई?
1: देखो जी, जेड़ा प्रोग्राम आंदा सी ना बुधवार नु, ते ओ हुन हो गया शनिवार नु।
0: यानी कि झांजरा दे बोर हुन शनिवार छन क्या करनगे?
1: बिल्कुल जी, ते जेड़े शनिवार नु प्रोग्राम सी ना, मेरी कलम तो सांझ शक्ति रूपा, ए तुसी सुन सकोगे बुधवार नु।
0: यानी कि बुधवार दी झांजरा दे बोर वाली फरमाइश शनिवार नु छन क्या करेगी, ते शनिवार दे सारे सिलसिले असी बुधवार पेश करया करांगे
1: जी।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
3: दादू, ये केड़ा पौधा है?
4: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ी ना। हाँ, फ्री फॉरेन ट्रिप लिंक ते क्लिक करो, हुणे करदा।
3: दादू रुको, लिंक ते क्लिक ना करना।
4: क्यों?
3: ए SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तब तोहड़े बैंक डिटेल्स होवणगे चोरी।
4: ओ थैंक्स गप्पू, बचा लिया। हां आले, तेरी समझदारी दा फल।
5: RBI कहंदा है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
2: की तुसी रेडियो प्रोग्राम जां वधिया कंटेंट बनाउंदे हो? आकाशवाणी जलंधर तुहाडे लई लैके आया है एक सुनहरी मौका। प्रसार भारती अपनी नवी कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 दे तहत सारे प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोड्यूसर्स ते कंटेंट क्रिएटर्स तों वक्-वक् प्रोग्रामां लई अर्जियां दी मंग कर रहा है। तुसी रेवेन्यू शेयरिंग, स्पॉन्सर्ड जां गेटस मोड ते साडे नाल काम कर सकते हो। अपनियां अर्जियां जल्दी भेजो। वधेरी जानकारी लई अज ही आकाशवाणी जलंधर नाल संपर्क करो। अप्लाई करन दी आखरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।
6: प्रोग्राम महक पंजाब दी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों प्रसारित कीता जा रहा है। इस प्रोग्राम च अगला गीत फिल्म मस्ती चों गुरदास मान दा गाया तुहानू सुनान जा रहे हैं। लो जी सुनो।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
3: प्रोग्राम महक पंजाब दे आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो प्रसारित कीता जा रहा है। ते इस प्रोग्राम दा आखिरी गीत तुहानू सुनान जा रहे हैं फिल्म तू मेरा भाई मैं तेरा भाई चो अमरिंदर गिल दा गाया गीत। लो जी सुनो।

हुने तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम महक पंजाब दी। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ये आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले साड़ी स्टूडियो दी घड़ी मुताबिक सवेर ते 9 बज रहे ने ते हुन पेश ने अज दियां मुख खबरां। भारतीय पुलाड़ खोज संगठन इसरो ने गनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम दे 3M परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर ले ने। वणज अते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यूरोप नाल भारत दी आर्थिक भाईवाली नू मजबूत करन दे उद्देश नाल अज तो 17 जुलाई तक स्पेन बेल्जियम अते फिनलैंड दे दौरे ते होणगे। कोलंबिया विच 56वीं अंतरराष्ट्रीय भौतिक विज्ञान ओलंपियाड विच 5 भारतीय विद्यार्थियों ने सोने दे तमगे जीते ने। भारत ने कतर दे साबका अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी दे देहांत श्रद्धांजलि देने लई अज राष्ट्रीय सोग दा ऐलान कीता है। अमरीका ने ईरान विरुद्ध नवे फौजी हमले शुरू किए ने। ताज़ा

दोस्तों हुणे तुसी जगजीत सिंह जी दे दिल नूं छू लैण वाली गज़ल सुनी। सचमुच जिंदगी दा हर सफ़ा सानू कुछ ना कुछ नवा सिखा के जांदा है। ते दोस्तों जिंदगी विच असी बहुत सारियां योजनावां बनाने हां, बहुत सारे सुपने सजाने हां, पर कई बार तकदीर अते तदबीर दे विचकार दा यह सफ़र भी इंसान नूं सब तो वड्डे सबक सिखा जांदा है। इसे खूबसूरत एहसास नूं अपनी दिलकश आवाज़ विच पेश कीता है पंकज उदास ने। ते आओ सुनदे आं पंकज उदास जी दी बेहद खूबसूरत गज़ल।

दोस्तों हुणी तुसी सुनी गुलाम अली साहब की आवाज़ च बहुत सोहनी जी गज़ल ते हुन एक होर खूबसूरत गज़ल असी तुहानू सुनान जा रहे हैं चंदन दास की आवाज़ च। दोस्तों जिंदगी नाल कदे शिकायत भी हुंदी है कदे मुहब्बत भी, पर जो लोग हर हाल विच जिंदगी नू मुस्कुरा के गले लगांदे ने ना उही असल मायने विच जीना जानते ने। इन्हां ही जज्बातां नू अपनी खास अदायगी नाल सजाया है जी चंदन दास जी ने। तो आओ सुनते हैं एक खूबसूरत गज़ल।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

बिल्कुल जी, बहुत सोहना जिहा गीत डोर फिल्म चों शफकत अमानत की आवाज़ से तुसी सुन रहे सी। ते अगला गीत असी तुहानू सुनान जा रहे हैं फिल्म लापता लेडीज़ चों अरिजीत सिंह दा गाया गीत। लो जी, इंजॉय करो।

0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घट कर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। इस दौरान वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माई भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक

0: जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। कोलंबिया के बुकारामंगा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तीनों परीक्षणों से इसरो ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल स्तर का नेतृत्व करेंगे। वियतनाम के फूकवोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जा रहे हैं। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले किए हैं। अमरीका की केंद्रीय कमान ने कहा कि इसका उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरे वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। महिला डबल्स का खिताब चीन और फ्रांस की जोड़ी गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच ने जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन के 11:05 वज रहे ने। आओ सुनते हैं प्रोग्राम तमक जलंधर पेंदी। प्रोग्राम का शुरुआती गीत आओ तुहानू सुनाने हंसराज हंस की आवाज़

0: ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਤਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। कोलंबिया के बुकारामंगा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई थी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक न करें।

0: और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। शोक दिवस के दौरान देश भर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। वियतनाम के फुकुओक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। ये दावे अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आया है जिसमें ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली, मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों, तटीय रडार ढांचे और सामरिक नौसैनिक संसाधनों को निशाना बनाया गया था। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 145 अंक घटकर 77,425 और निफ्टी 55 अंक लुढ़ककर 24,153 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश कर रहे हैं प्रोग्राम वस्ते वेड़े।
2: प्रोग्राम नमस्कार नमस्कार
1: प्रोग्राम वस्ते वेड़े लैके जी असी हाजिर हाँ
2: और मैं हरप्रीत भी हाजिर हाँ
1: जी। ते मैं हरप्रीत दे नाल पूनम हाजिर हाँ। हरप्रीत जी सुनाओ की हाल चाल ने।
2: पूनम जी हाल बहुत वधिया और कोशिश कर रहे हैं कि मौसम दे अकॉर्डिंगली चलीए। तो जदों जिंदगी नू असी मौसम दे नाल तालमेल बिठाणा जिंदगी नू आ जांदा ते उदों हाल आपे वधिया हो जांदा।
1: बिल्कुल सही कहा तुसी। अक्सर असी जदों भी मौसम बदलदा ना तुसी सोचा होना कदे नोटिस कीता होना कि कोई भी मौसम होवे असी हमेशा शिकायत कर रहे हुंदे आ
2: जी
1: बरसात बहुत पै रही है, गर्मी बहुत पै रही है, ठंड ही बहुत है। ये मतलब कि कहण दा ये है कि हर मौसम प्रति अपना जिहड़ा असी नकारात्मक पक्ष है ना या सोच है, दृष्टिकोण है, उसे अक्सर रखते हैं।
2: आम तौर पर इंसान की करते ने असी लोग की करते हैं कि तसली नहीं होंगी सानू। असी कहते हैं कि हाँ जी कोई भी चीज़ जे मौसम अज हवा चलती भी तो असी यह नहीं कहते कि भी तसली कर लिए सानू। उस वेले असी टेंशन ले लें कि हुण हनेरी चल पई है, हुण तेज़ हवा चल पई, हुण बत्ती ना चली जाए किधरे, हुण ऐ ना हो जाए। तो जिंदगी है पूनम जी, काफ़ी चीज़ा इस तरह होंदिया ने कि असी सोचते बहुत कुछ हाँ पर उदा होंदिया नहीं है। कोशिश करनी चाहिए है जिंदगी दे विच सकारात्मकता लेके आईए, पॉजिटिविटी लेके आईए। नो डाउट हर पासे सानू दिखती तो नैगेटिविटी है, पर उस नैगेटिविटी दे विचों असी पॉजिटिविटी किद्दां कढ़नी है, इम्पॉसीबल दे विचों आई एम पॉसीबल किद्दां कहना है, वह साडी अपनी सोच ते ही डिपेंड करदा है। वह कोई सानू गाइड नहीं कर सकदा, वह तुसी मैं असी अपने अंदरों ही जदों चानना आएगा ना उदों ही वह चीज़ सही होएगी और उदों ही सानू मौसम दे अकॉर्डिंगली खुशी भी मिलेगी और सब कुछ असी एक्सेप्ट भी करांगे।
1: कुदरत कहंदे ने कि मिजाज हुंदा है बदलना, कुदरत दे मुताबिक इंसान नू बदलना चाहिदा है। कुदरत तो सीखना चाहिदा है कि किवें बदलाव जिंदगी दे विच आउंदे ने ते किवें असी उस चीज़ नू भी एक्सैप्ट करना हुंदा है जो कई बार साडे लई सुखावी नहीं हुंदी। सो साडे मुताबिक हर तरह चीज़ होवे ये अजकल दे आधुनिक समाज की सुविधाजनक एक रवायत बन चुकी है, सहूलत बन चुकी है, पर कुदरत तां कुदरती रंग रूप दे विच ही सानू नज़र आउंदी है। सो असी उस नू अपने मुताबिक नहीं चला सकते बल्कि सानू कुदरत दे मुताबिक एक स्वीकार अपने मन दे विच लेके आनी चाहीदी है।
2: थोड़ी जी शुरुआत स्कूल्स दे विच जरूर हो रही है। स्कूल्स वाले अजकल आप भी जागरूक हो रहे ने और छोटे बच्चियां तो ही उन्होंने इन्हां चीज़ां दे विच उन्हां नूं बिठाना शुरू कर दिता है, उन्हां नूं एजुकेट करना शुरू कर दिता है। जिवें कि सब तो छोटे बच्चे दे बच्चियां दे विच अगर उन्हां नूं सिखाना होवे कि यह मौसम रेनी

0: मौसम है तो ओ वंस वन ने अजकल अम्ब्रेलाज आए ने निके निके बच्चियां दे, सो
1: जी
0: स्कूल वाले कदी रेनी डे मना रहे ने।
1: मतलब कि हर मौसम नु मानना सिखा रहे ने।
0: जी जी हाँ जी बिल्कुल सही गल है, सही तुसी बिल्कुल सही अल्फाज बोले कि हर मौसम नु मानना सिखा रहे ने। और अजकल रेनी डेज चल रहे ने, रेन रेन गो अवे आपा कह तो सकते हैं, पर रेन रेन गो अवे होनी नहीं है, रेन ने तो आना ही है। और मौसम की जरूरत भी है, एक मिजाज भी है जी कुदरत का कि जो चीज़ होनी है वो होनी ही है। तो स्कूलों ने बड़ा अच्छा उपराला शुरू किया बच्चों को एजुकेट करन दा कि रेनी सीजन दे विच बरसाती मौसम दे विच किद्दां दे एहतियात वरतने चाहिए ने, किद्दां दियां इदां दियां चीज़ां कर सकते ने, निक्के निक्के बच्चों को समझाना साडा फर्ज है। और जदों
1: बिल्कुल
0: टीचर्स भी जुड़ जाण पेरेंट्स दे नाल तो फिर बच्चों को समझ आ जाती है और फिर बच्चे अपना ध्यान भी रखणगे।
1: मैनूं लगता कि बच्चे तो समझ जाते हैं पर असीं वड्डे नहीं समझ पाते
0: बहुत सही
1: क्योंकि
0: गल कही
1: बच्चे तो
0: तुसी।
1: स्कूलों के जो सिखाया जाता है वह समझ ही जाते हैं पर जो वे कहें कि गर्मी बहुत लग रही है तो असं एक मिनट भी एसी तो बिना नहीं रह सकते, बरसात हो रही है तो साढ़े लिए बहुत ही असुविधा हो गई है, फिर बच्चे भी तो व्ड्या तो सीखते हैं ना।
0: जी पूनम जी, इत्थे एक स्टडी भी आप सामने आई हैगी है कि आप एसी च बहिंदे पए आ अजकल सानू चंगा भी लगता है, अवेलेबल भी है, ये भी गल है ना कि अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, हर कमरे के हिसाब नाल छोटा एसी वड्डा एसी एने टन का एसी अवेलेबल भी है। पर जेकर असी अपने हेल्थ परस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू नाल देखिए तो
1: जी
0: डॉक्टरों की गल सुनीए तो एसी करता की है कि वह ड्राईनैस ले आता है। तो एक नवी जड़ी चीज़ सामने आई है कि सिर्फ ड्राईनैस कमरे के विच नहीं करता, वो ड्राईनैस गले च भी करता है, ईवन नक दे विच भी करता है।
1: जी
0: और इदा की ड्राईनैस करता है कि तुहानू,
1: ताड़े शरीर दी अपनी नमी भी सोख लेंदा
0: हाँ
1: है
0: बहुत सही, हाँ जी बिल्कुल सही गल
1: जी।
0: कही।
1: सो
0: और
1: ये गल्लां दा ख्याल रखा जाना जरूरी है कि असी अन्ने वाह एक जो सुविधावां सानू मिलियां ने उन्हें उसका इस्तेमाल ना करते जाइए, बल्कि एसी नू बंद करके तुसी खुले बालकनी दे विच विहड़े दे विच बरखा दियां फुहारां दा आनंद मारो, ठंडी हवा दा आनंद माणो ते कुदरत दे नाल एकमिक हो जाओ तां किन्ना सोहणा होएगा।
0: ते
1: इहो जिहा गीत भी सुन लईए आपां।
0: बिल्कुल जी।

0: वाह जी वाह, इन्ना प्यारा गीत, मैं तो खो ही गई सी, पर हुण वापस आ जाने हैं और वसदे बेड़े दे विच प्रोग्राम नू अगे वधाउंदे होए
1: जी
0: पकवान हाजिर करिए जी।
1: क्या बात है जी, इहो जिहा ससुरा जी नूं सुण के ही मूंह च पानी आ जाँदा है। ते फिर अज कहिड़ी रेसिपी तुसीं इहो जी लै के आए हो?
0: देखो पूनम जी, आपां आम तौर ते सर्दियां दे विच इक बड़ी वधिया चीज़ खांदे आं, पंजीरी।
1: जी
0: मन करदा कि असीं हुण वी खाइए, पर कहिंदे कि गर्मियां च पंजीरी किद्दां खा सकदे आं? खा सकदे आं, बिल्कुल खा सकदे आं। अज आपां गर्मियां विच बणन वाली पंजीरी बनाने आं।
1: जी
0: ते इहदे लई सानूं चाहिदा जी 2 कप मखाणे, और तिल चाहिए ने वाइट, सत्तू चाहिए थोड़ा जहा, ते खंड चाहिए है।
1: ठीक है
0: बस
1: जी।
0: छोटी जी रेसिपी है। 2 कप मखाने लैके उन्होंने भुनना, असी घ्यो च नहीं भुनना, उदा ही उन्होंने अच्छी तरीके रोस्ट कर लेना,
1: जी
0: उन्होंने ठंडा करने लिए रख देना, और जदों ठंडा हो जाएगा उदों उन्होंने आप पीस लेना, क्रश कर लेना अच्छे तरीके।
1: जी
0: फिर असी 2 वे चम्मच लैने हैं तिल दे, वाइट वाले तिल जड़े होंगे ने ना, उन्होंने भी असी अच्छे तरह रोस्ट कर लेना। जदों दोनों चीज़ां रोस्ट हो गई उन्होंने आप साइड पर कर दिता, मखाने असी क्रश कर ले जो ठंडे हो गए।
1: जी
0: तो फिर आप गैस ऑन करनी, एक भांडा लेना गैस ऑन करनी है दोबारा, और वो अद्धी कौली पानी देसी घ्यो की,
1: अच्छा जी।
0: तो एक कौली पूरी पा देनी है सत्तू दी। सत्तू मतलब जोड़ा काले छोलियां तो बनता है,
1: जी
0: पीसिया
1: जी
0: होया है ना,
1: जी
0: चिट्टे चिट्टे छोले भी पा सकते, काले छोले पा सकते हैं, काफ़ी जगह पर वक् वक् तरीके दे नाल सत्तू बनाते हैं, पर असी जो बढ़िया बनाया, अजकल पाउडर भी मार्केट चो मिलता पाया,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो असी उही ले लेने हैं।
1: जी
0: तो वो एक कौली पा के, जिदा आप बेसन का जदों बनाने हलवा या असी आटे का हलवा बनाने, तो उन्होंने भुनते हैं ना जिदा,
1: जी
0: सिमिलरली असी उस घ्यो दे सत्तू नू भुनना है, वो अपने आप खुशबू आएगी, और वो
1: जी
0: खुशबू तो थोड़ा रंग बदलने वाले शक्ल तो ही तुहानू पता चल जाएगा कि हुण अच्छे तरीके नाल पुज गया।
1: बिल्कुल जी, सवाणियां पछाड़ लैंदियां ने कि कदों जिहड़ी आपां रेसिपी बना रहे हां उहदे विच जो भी चीज़ असीं पा रहे हां इनग्रीडियंट्स, और कदों रंग बदल रहे ने ते कदों ओह पक गए ने ते कदों असीं अगला स्टेप लैणा है।
0: जी अगले स्टेप च असी गैस बंद कर लेनी है और
1: जी
0: इनू ठंडा करना है, इस मटेरियल नू भी।
1: ठीक है
0: तो
1: जी।
0: साडे कोल 3 मेजर इनग्रीडियंट्स ने, तीनों असी हुण ठंडा कर लिया उन्हां नू, और तिन्हां नू असी मिक्स करना है। ते उहदे विच सब तो पहला जदों मिक्स हो गए, उहदे विच छोटी जी चुटकी कह लो तुसी अपनी छोटी इलायची दे पाउडर दी पा देनी है,
1: जी
0: अजकल वो भी मार्केट च बनी बनाई मिलती पई है,
1: जी
0: और फिर इन्हां नू मिक्स कर लेना, और उहदे विच पा दो फिर धागे वाली मिश्री। जे वह नहीं पाना चाहते तो जिदा दी भी तुसी इहदे विच खंड पाना चाहते हो, शक्कर पानी चाहते हो, जिदा दा भी मिठा तुहाडे घर चलता है, तुहानू स्वाद लगता है, वह पाओ और उन्होंने अच्छे तरीके नाल रला के, ते उन्हों तुसी डब्बे च बंद करके रख लो, और फिर तुसी 2 चम्मच 2.5 चम्मच शाम वेले दूध नाल खाओ, पंजीरी तैयार। और ठंडक दी ठंडक पेट लई सब तो वधिया आइटम है, ठंडी आइटम हैगी है, ए कोई गर्मी नहीं करती क्योंकि इहदे विच असी पाया सत्तू।
1: जी
0: छोटी जी रेसिपी है जिहड़ी सानू ताकत भी देगी, और अज कल दे सीजन दे विच जिदा गर्मी इन्नी ज़्यादा हैगी है, असी काफ़ी चीज़ां चाहुंदे हाँ कि सानू ठंडक मिले, तो उहदे लई बहुत वधिया, स्वाद दा स्वाद ते इनग्रीडियंट्स बहुत वधिया। इहनू थोड़ी जी इहदे विच अपनी सहूलत दे अकॉर्डिंगली, अपने घर दे मैंबरां दी तबीयत दे अकॉर्डिंगली तुसी

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने ऐसा झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सभी मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए मात्र एक महीने में 4 नई खेप के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इनमें नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरी, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है, इसे इस महीने की 11 तारीख को शामिल किया गया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टर्स और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजेस पर क्लिक ना करें और अपनी

0: व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। वियतनाम के फूक क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड में भी अगले 2 दिन तक सामान्य बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे 1:05 वज रहे ने। आओ हुण तुहानू साडे दिन विच प्रसारित किए जाने वाले बाकी दे रहिंदे प्रोग्राम्स ते उन्हां दा प्रसारण समां दस दईए।

जोशी अमन अरोड़ा, सरिता तिवारी बांका बहादुर अरोड़ा, संध्या बस्सी, आरक्षित यश जोशी, ऋषभ गणेश ते जय भारती। प्रस्तुति होएगी गुरविंदर सिंह दी। ते राती 10:02 ते कवि गोष्ठी दे विच कलाकार होंगे सुरिंदरप्रीत धनिया, बलविंदर सिंह बालम, हरनेक सिंह कलेर ते मंगलदीप। ते रात 10:30 कुछ गजलां समात फरमाओगे। समाचार ते मुख समाचार पूरे अपने निर्धारित समय ते पूरे दिन विच प्रसारित किए जाएंगे। ये सन साढ़े अज के बाकी दे रहिंदे प्रोग्राम्स ते उन्हां दा प्रसारण समा। असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं।

85 हो गईयां ने। इस तो अलावा 510 व्यक्तियों विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की गई है। पुलिस टीम ने कार्रवाई दौरान 19 भगौड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। लोग एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946 93946 राही लुड़ींदे अपराधियों ते गैंगस्टरां दी गुप्त रूप विच जानकारी दे सकदे ने अते अपराध ते अपराधिक गतिविधियां बारे सूह भी दे सकदे ने। नंबर एक बार फिर सुन लो 93946 93946। इस दौरान पुलिस टीम ने नशियां विरुद्ध अपनी मुहिम युद्ध नशियां विरुद्ध 498वें दिन भी जारी रखदियां कल 69 नशा तस्करां नूं गिरफ्तार किया। उन्हां दे कब्जे विच्चों 829 ग्राम हेरोइन 565 नशीलियां गोलियां ते 5,250 रुपए की ड्रग मनी बरामद की। इस नाल सिर्फ 498 दिनों विच गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करां की गिणती 73,505 हो गई है। सरकार ने सोशल मीडिया से फैल रहे एक गूगल फार्म का खंडन किया है जिस विच डॉक्टरां ते होर पेशेवरां लई इंटर्नशिप की पेशकश करन दा झूठा

0: ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੇਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅੱਜ 6 ਲੇਨ ਵਾਲੇ ਲਖਨਊ ਕਾਨਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਪੇਨ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇਰਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ ਨੇ ਜੋਰਡਨ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शहरियत और गैर मुल्की होने का तायुन मुनसिफाना, कानूनी और मुनासिब अमल के जरिए किया जाना चाहिए। अदालत ने 27 अफराद को गैर मुल्की करार देने के गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। अदालत आलिया ने राम जन्मभूमि मंदिर में अतियात की मुबैना खुर्दबुर्द की तहकीकत करने वाली SIT की कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस के रिसाव से मुतासिरा झारखंड के कारकुनों के मामले का नोटिस लिया है और फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया है। वियतनाम में कश्ती के हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय शहरियों के जसद खाकी आज रात वियतनाम एयरलाइंस की परवास के जरिए भारत लाए जा रहे हैं। ईरान ने अपने फौजी ठिकानों पर अमरीका के हमलों के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई करते हुए उर्दुन, बहरेन और कुवैत में अमरीका के फौजी अड्डों पर हमले किए हैं और ख्वातीन क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान पर मेज़बान इंग्लैंड भारत के साथ तारीखी वाहिद टेस्ट मैच में आज अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शहरियत के तायुन का अमल या किसी फर्द को गैर मुल्की करार देने की कार्रवाई मुनसिफाना होनी चाहिए और इसमें अदालती उसूलों से समझौता नहीं किया जा सकता। अदालत आलिया ने 27 अफराद की दाखिल करदा दरख्वास्तों की समाअत करते हुए यह बात कही जिन्हें आसाम में गैर मुल्कियों से मुतालिक ट्राइब्यूनल ने गैर मुल्की करार दिया था। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता पर मुश्तमिल बेंच ने 27 केसों में गुवाहाटी हाईकोर्ट और गैर मुल्कियों से मुतालिक ट्राइब्यूनल के अहकाम को रद्द कर दिया। अदालत आलिया ने हिदायत दी है कि मुतालिका ट्राइब्यूनल की जानिब से इन केसों की दोबारा समाअत होने तक दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ डराने धमकाने की कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की जानिब से तश्कील दी गई खसूसी जांच टीम SIT को हिदायत दी है कि वो अपनी तहकीकात के बारे में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करे। अदालत ने उन दरख्वास्तों पर मरकजी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किए हैं जिनमें अयोध्या राम मंदिर के लिए दिए गए एहतियात में मुबैना खुर्दबुर्द की तहकीकात CBI से कराने की अपील की गई है। इससे कबल उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की दरख्वास्त पर 13 जून को 3 अरकान पर मुश्तमिल SIT तश्कील दी थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हुकूमत के दरख्वास्त गुजार संजीव कुमार अम्बाष्ठा की जानिब से एक उजरदारी दाखिल किए जाने के बाद तमिलनाडु में अमोनिया गैस लीक में मुतासरा झारखंड के वर्करों के मामले का नोटिस लिया है। सदर जमहूरिया के सेक्रेटेरिएट ने रोजगार और मेहनत के सेक्रेटरियों को हिदायत दी है कि वो फौरी जरूरी कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई के सिलसिले में रिपोर्ट दाखिल करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब हमाजहत तरक्की से हर शहरी की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली यकीनी हो जाती है तो इससे मुल्क की तरक्की को नई रफ्तार मिलती है। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक संस्कृत श्लोक शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क इस बायस तरगीब जज्बे के साथ भारत की सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलंबिया में मुनक्किदा 56वें बैन अल-अक़वामी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने का तमगा जीतने पर भारतीय दस्ते को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस कामयाबी से मुल्क की युवा शक्ति की बेपनाह सलाहियत की अक्कासी होती है। सरकार ने कहा है कि मुल्क में ही तैयार किए गए नए सिलसिले के 4 बहरी जंगी जहाजों को सिर्फ 1 महीने में भारतीय बहरिया में शामिल किया गया है ताकि मुल्क के बहरी दिफा को मजीद मुस्तहकम बनाया जा सके। इस सिलसिले के तहत INS महिंद्रा गिरी को इस महीने की 11 तारीख को बहरिया में शामिल किया गया है, जो मुल्क में ही डिजाइन किया गया नीलगिरी जुमरे का स्टेल्थ फ्रिगेट है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भारतीय बहरिया ने पिछले महीने की 21 तारीख को मुल्क में ही तैयार किए गए 3 जंगी बहरी जहाजों को अपने बेड़े में शामिल किया था। इनमें INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे शामिल हैं। इन जंगी जहाजों को फजाई शिकन, जमीनी शिकन और आबदोज शिकन जंगी जहाज साजो सामान समेत मुख्तलिफ तरह के इस्तेमाल के लिए प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17A नए सिलसिले के 7 गाइडेड मिसाइल जंगी बहरी जहाज बनाने का भारतीय बहरिया का जदीद तर्ज का स्टील्थ फ्रिगेट प्रोग्राम है। ये जंगी जहाज बहरिया की कार्रवाई से मुतालिक तमाम शोबों में भरपूर अंदाज से कार्रवाई करने की सलाहियत रखते हैं। इन जहाजों को बेशतर मुल्की वसाइल से तैयार किया गया और ये आत्मनिर्भर भारत के नजरिए की अक्कासी करते हैं और इनसे मुल्क के दिफाई मैन्युफैक्चरिंग इकोनिज़ाम को तकवियत मिलेगी। इन जंगी जहाज़ों से बहरी सिक्योरिटी में इजाफा होगा, बहरी मईशत को तकवियत मिलेगी और एक सरकर्दा बहरी ताकत के तौर पर भारत की पोजीशन मुस्तहकम होगी। दिल्ली से अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वियतनाम में फूकोक जजीरे के नज़दीक एक कश्ती के डूबने के हादसे में मारे गए 15 भारतीय सयाहों के जसद खाकी को वियतनाम एयरलाइंस की परवाज VNN 979 के जरिए आज हो ची मिन शहर से भारत वापस लाया जाएगा। वियतनाम में भारतीय सफारतखाने ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह परवाज मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे हो ची मिन शहर से रवाना होगी और तवक्को है कि भारतीय वक्त के मुताबिक यह परवाज रात 9:35 पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर पहुंचेगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के हमराह लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह करेंगे। 63 किलोमीटर तवील 6 लेन वाला लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे भारत का दूसरा सबसे तवील सतह जमीन से ऊपर कॉरिडोर होने के साथ साथ मुल्क का ऐसा पहला एक्सप्रेसवे भी है जिसे ऐसी तामीराती टेक्नोलॉजी से तामीर किया गया है जो ऑटोमेटेड और इंटेलिजेंट मशीनों पर मबनी है। बिहार में वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने आज पटना में मुनक्किद एक तकरीब में बिहार हेली टूरिज्म और फिजाई खिदमात की स्कीम की सताइश की है। वज़ीर आला ने कहा कि इस स्कीम का आगाज़ रियासत में सियाहत को बेहतर बनाने और बिहार में कनेक्टिविटी में इजाफा करने के लिए किया गया है।
3: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शो केस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिएगा कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
1: मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में MPTECH ग्रोथ कॉन्क्लेव का तीसरा मरहला हो रहा है। रियासत के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने इस कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया और 178.70 करोड़ रुपए से ज्यादा की मजमूई सरमाएकारी के साथ 20 सनती यूनिटों का आगाज किया। इस मौके पर डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एक ज़माने में मध्य प्रदेश को सिर्फ खेती के लिए जाना जाता था लेकिन अब ये रियासत ड्रोन से लेकर मिसाइल तक हर चीज़ बना रही है। ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाब इस्लामी ने उर्दुन, बहरेन और कुवैत में अमरीका के फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। उसने ईरान के फौजी ठिकानों पर अमरीका के हालिया हमलों के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई के तौर पर ये हमले किए हैं। ईरान की सरकारी खबरसा एजेंसी के मुताबिक इस कार्रवाई में उर्दुन में प्रिंस हसन फिजाइया के अड्डे, बहरेन में शेख ईसा फिजाइया के अड्डे और कुवैत में अल सालिम और अहमद अल जाबिर फिजाइया के अड्डों को निशाना बनाया गया है। ख्वातीन क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान पर वाहिद तारीखी टेस्ट मैच में इंग्लैंड आज दोपहर भारत के खिलाफ अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट के नुकसान पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। कल तीसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो भारत को कुल 269 रन की सबकत हासिल थी और चाय के वक्त तक भारत ने अपनी दूसरी इनिंग्स 7 विकेट पर 341 रन बनाकर खत्म करने का ऐलान किया और इंग्लैंड को 457 रन का निशाना दिया। विकेटकीपर बल्ले

0: बाज यस्तिका भाटिया लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट सेंचुरी बनाने वाली पहली खातून बनी। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शहरियत और गैर मुल्की होने का तायुन मुनसिफाना कानूनी और मुनासिब अमल के जरिए किया जाना चाहिए। अदालत ने 27 अफराद को गैर मुल्की करार देने के गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। अदालत आलिया ने राम जन्मभूमि मंदिर में अतियात की मुबीना खुर्दबुर्द की तहकीकात करने वाली SIT की कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस के रिसाव से मुतासरा झारखंड के कारकुनों के मामले का नोटिस लिया है और फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। समाचारों तो बाद एक बार फिर तो हाजिर हाँ प्रोग्राम फौजी वीरां दे लैके। आओ प्रोग्राम अगे तोड़दे हैं ते सुनदे हैं प्रोग्राम दा अगला गीत। फिल्म फैशन चो लिया गया, आवाज़ श्रुति पाठक दी।

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ 2:15 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में CBI जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को SI का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घट कर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज INS महेंद्र गिरी है जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6th नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि INS महेंद्र गिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में

0: शामिल किया गया था।
1: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित तीन प्लेटफॉर्म INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है, जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का तीसरा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
2: अपने दो वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई है, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे कुछ नहीं हुआ। अब मध्यप्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने FDI के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
3: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करें।

0: जा सके, बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो, तब समझ गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
1: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकिनगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं, जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ

0: इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। दिन दे 2:30 बज रहे ने। आओ सुनदे हां प्रोग्राम रंगली धरती। अज इस प्रोग्राम दे कलाकार होणगे भजन लाल जैला ते साथी। आओ इन्हां दी आवाज़ विच सुनदे हां लोक गाथा अली नबी।

सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। जमशेदपुर तो लिख रहे ने हरजिंदर सिंह पाटिया, एंजल पाटिया, नवनीत पाटिया ते पप्पी पाटिया। जिला बठिंडा पिंड थाना तो लिख रहे ने हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता ते गीता। कोई भी गीत सुना चाहते ने। खाने की ढाब बलौट तो लिख रहे ने शमशेर सिंह, जसविंदर कौर, करण प्रताप सिंह, मनप्रीत कौर ते तरनवीर सिंह। कोई भी गीत सुनना चाहते ने। रावर करनाल तो लिख रहे ने ज्ञान भूषण शर्मा ते सोमनाथ कालिया।

रेलवे कलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान तो लिख रहे ने जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभक नायक ते सारा परिवार। इन्हां सारयां नूं सुना रहे हां अखिल दी आवाज़ विच। इह गीत तुसीं सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिट्टियां।

सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। तिला जी अगला खत लिख रहे ने मुक्तसर तो। बाबू सिंह दमान, बलजिंदर कौर, रवनीत, निशु ते भुपिंदर। राजपुरा तो लिख रहे ने हरदीप सिंह, जगवीर सिंह, ज्वाला सिंह, जगराज ते नाल इन्हां दे जगसीर सिंह। मोहला फतेहगढ़ लुधियाना तो लिख रहे ने विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, नीलमपुरी, बीकेपुरी, कैलाश, रमा ते आर एस पुरी। गांधी चौंक रोपड़ पंजाब तो लिख रहे ने हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जयतेग ते मिका बिरक ते इन्हां सारे नूं सुना रहे हैं। अफसाना खान की आवाज़ में यह गीत है, तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां, ते जेड़े दोस्त इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाए वो जरूर हुण भी शामिल हो सकते ने, या फिर कल वाला जो दिन आना है उस च भी तुसी शामिल हो सकते हो। प्रोग्राम का समा सेम रहेगा जी दोपहर के ठीक 3 बजे DTS की पंजाबी प्रसारण सेवा ते तुसी सुन सकते हो प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां, ते जिस विच तुसी चिट्ठियां पाउंदे हो जी। ते चिट्ठियां पाने लई पता एक बार फिर तो दस रही हूँ, पोस्ट कार्ड के एड्रेस वाले पासे लिखना है प्रोग्राम का नाँ चिट्ठियां मिठियां, मैनिफेस्टेशन डायरैक्टर आकाशवाणी जलंधर, पिनकोड 144001। तो यही काम करके पहुँच चुके ने साढ़े को पेनकुड़ियाणा तो। लिख रहे ने मलकीत सिंह, मनजीत कौर, दुपिंदर, पोता गुरशबर, जीत सिंह ते सारे साथी। रायण तो लिख रहे ने डॉक्टर बनवारी जयपाल, बिमला, सोनू, ममता, मोक्ष, दिशा, सुशांत ते विक्रम जयपाल। टालीवाला जट्टा तो लिख रहे ने साहिब सिंह, सुखजीत कौर, बलविंदर, हरजिंदर ते सारे साथी। हाजीपुर तो लिख रहे ने केहर मामा, सुमोहन मामा, चिंटू मामा, मामी ब्यासो, मामी सुदेश कुमारी, मासर दया राम, मोनू, सोनू ते बंटी वाजीवा, ते सारा परिवार रल मल के जो इस प्रोग्राम नू सुनदा है। ते देखो ना अपने नानकियां दे नां किन्ने प्यार दे नाल लिखे ने। लिख रहे ने जिला फाजिलका तो सोहन लाल राठी, ते इना दे नाल काका गुरमेल सिंह पट्टी ते गुरमेजो सिंह ते सारा परिवार। लिख रहे ने बंशी लाल संधु पिंड तेजा मोड़ी तो, पोतरा कबीर ते जैजबीर संधु पोतरियां, वरनीत ते पवनीत कौर ते सारा परिवार। ते इन्हां सारे नूं सुना रहे हां अंबर वशिष्ठ दी आवाज़ विच गीत है, तुसी सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

नमस्कार, मीडियम वेव 343 6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100 6 मेगा।

जानवर इस फिल्म का गीत तुसी सुन रहे सी मोहम्मद रफी की आवाज़ विच। आओ सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत आशा भोसले की आवाज़ विच। फिल्म डॉन चुलिया गया।

मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली के उन

तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। तुर की बाणी रब्बी सुनेहा है, इस बाणी नू विचार के कोई भी प्राणी उस करते नाल अपेदता प्राप्त कर सकता है। प्रभु नाल नेड़ता या एकमिकता रखण वाले गुरसिखा नू संत कह के संबोधन किया जाता है, जो होरना प्राणियां नू नाम जपण दी विधि द्वारा अनहद बाणी दी कुंजी सौंप दिंदे हन। पर गुरबाणी विच जिथे एक वचन रूप विच संत पद आया है, तो उस तो भाव गुरु है। बाणी के बोहित पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी राग कानड़ा विच संत प्रभु नाल मिलाप दी तीबर तांग रखदे हुए प्रभु प्यारे संत जना नाल मिलाप बारे बेनती करदे हन। साजना संत आओ मेरा, आनदा गुण गाए मंगल, कसमला मिट जाहे परेरा। इस शब्द का राग कानड़ा विच ही गायन कीता है भाई महेंद्र सिंह होरा ने।

0: आओ मेरा आनदा गुन गाए मंगल कसमला मिट जाहे परेरा। इस शब्द का गायन किया सी भाई मोहिंदर सिंह होरा ने। गुरबाणी विच किसे भी चीज़ की तीबरता बधाने वास्ते राड़ा अखर उस शब्द के पिछेतर लग जाता है, जिमें लोड़ींदा शब्द की तीबरता बधाने वास्ते राड़ा अखर पिछेतर लगा के शब्द लोड़ींदड़ा आया है। जीव रूपी इस्त्री अकाल पुरख नूं कई नावां नाल संबोधन करती है, जिमें सज्जण साजन मित्र सखा आदि। जतसरी राग विच पंचम गुरदेव सर्व कला समर्थ प्रभु दी तीबर लोचा वास्ते बेनती करदे हन। सुनदे हां डॉक्टर हरपिंदरजीत कौर होरां पासों वार्ता। लुड़ींदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावह नीके कट कट तिसह बसेरा।
1: यह पवित्र फुरमान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 700 उपर श्री गुरु अर्जन साहिब जी का उचारिया होया राग जैतसरी विच सुशोभित है। इस रहाओ दी तुक विच गुरु पातशाह जी उपदेश करते हैं कि जेकर जग्यासो साधक साजन प्रभु नू मिलन दी लोचा रखता है तो प्रभु प्यारे दी सिफत सलाह दे सोहने गीत गाउण दा गुण उस नू धारण करना होवेगा, क्योंकि मेरे साजन मित्र दी शोभा ते वड्याई ऐसी है कि वह हर एक हिरदे विच वस्या होया है अते हर कोई उसनू मिलन लई तांग रहा है। शब्द दी पहली तुक लोड़िंदड़ा साजन मेरा विच गुरु साहिब जी ने साजन प्रभु दे मिलाप लई तीबर तड़प प्रगटाई है। ये ओहो तड़प है जो गुरु साहिब जी ने अपने गुरु पिता जी दे दर्शना लई दर्शाई सी। मेरा मन लोचै गुरदर्शन ताई बिलप करे चात्रिक की न्याई, त्रिखा ना उतरे सांत ना आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो। लोड़िंदड़ा साजन ओ मित्र प्यारा प्रभु है जिस दे स्वरूप नू गुरु नानक साहिब जी ने आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच आख्या है। ओ साजन केवल एक है, सदा सदा है, अनादि शब्द है, सृष्टि दा सिरजनहार ते उस विच व्यापक है। उस नू ना किसे दा डर है अते ना ही किसे नाल वैर। ओ काल रहत है, समय दा उस उते कोई असर नहीं, ओ जन्म मरन विच नहीं आउंदा, अपने आप तो उस दा प्रकाश होया है। गुरु ग्रंथ साहिब विच अकाल पुरख दे गुणा नू सर्व व्यापक अते अपरंपर शब्दां राहीं बयानिया है। सर्व व्यापक होण करके ओ सब दे नेड़े है अते मन दियां हद्दां तो परे होण करके अपरंपर है, निर्लेप है। वो निर्गुण भी है ते सरगुण भी, गुप्त भी है ते प्रगट भी, सूखम भी है ते स्थूल भी, अफुर भी है ते सफुर भी। वो अगम अगाध अगोचर होण दे नाल नाल दयालु कृपालु भगत वशल गोबिंद है। ऐसे अनंत गुणा दे भंडार साजन बारे गुरु साहिब जी फुरमाउंदे हन, तेरी गतमित तू है जानदा तुद कीमत पाई, तू अलख अगोचर अगम है गुरमत दिखाई। गुरु पातशाह जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि मेरा साजन प्रभु ही सब जीव स्त्रियों का मालक खसम है। इको कंत सबाइया जित्ती दर खड़िया, नानक कंते रतियां पूछे बातड़ियां। हाँ, सारिया जग्यासु जीव स्त्रियां उस केवल एक स्वामी दे दर उते इस नाल मिलाप दी आग्या मिलन दी संभावनावां विच खड़ियां हन। ये भी ध्यान योग है कि गुरबाणी विच किते भी सच्चार साजन दा इंद्रियां दी पकड़ विच आ जाण वाले स्थूल रूप दा जिक्र नहीं होया। जिन्हां अखां नाल प्रीतम साजन दिसदा ते अनुभव हुंदा है उस उचेरे ज्ञान दिया अनुभवी अखां होर ही हन। गुरफुरमान है, लोएन लोई डिठ प्यास न बुझै मूँ कणी, नानक से अखड़ियां बयान जिने डिसंदो मां पिरी। गुरु साहिब जी ने सच्चार साजन नूं कदे भी बौद्धिक विवाद दा विशा नहीं बनाया, सगों उन्हां दा साजन सचखंडी निरंकार है अते ओ भगती समर्पण अते डूंघे विश्वास राहीं अनुभव विच आउंदा है। हर जीव अपने आप

साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा, जानी अड़ा हर जानी अड़ा, नैन अलोयड़ा हर जानी अड़ा। इस शब्द का गायन किया सी भाई मनजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
1: अजय ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है। तुसीं साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। हुण तो कुछ ही पलां विच यानी शाम 6 बजे साडे दिल्ली केंद्र तो सुनोगे हिंदी समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और इसके लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों से विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष जांच दल से जांच संबंधी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को इस मामले में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्रियों को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 6 लेन का यह देश का दूसरा सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है। इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। यह स्वचालित और रोबोटिक मशीनों की सहायता से निर्मित देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर केवल 35 से 45 मिनट रह जाएगा। दोनों शहरों के बीच कार से यात्रा करने पर ₹275 टोल टैक्स लगेगा। एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेजी से विकास होगा।
4: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है। और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और

0: और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन की लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर ही सिमट गई। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 341 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, FM बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी अमृतसर ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसीं साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। लो हुण सुणो साडे अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा।

शाम 6:30 बजे सुनोगे देहाती प्रोग्राम। आज दे इस प्रोग्राम विच खेती रही कुदरतीकरण इहदे बारे जानकारी देणगे डॉक्टर अवतार सिंह। इस तों इलावा बरसातां च सब्जियां दी काश्त बारे जानकारी देणगे डॉक्टर दिलप्रीत तलवार। गीत संगीत होएगा मौसम दा हाल ते कल दे प्रोग्राम भी दस्से जाणगे।

शाम 7:40 ते प्रोग्राम विविधा तहत हिंदी वार्ता सुनोगे। रात 8 बजे सुनोगे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। रात 9:15 साढ़े दिल्ली केंद्र तो सुनोगे समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9 ते रात 9:15 सुनोगे स्पॉटलाइट। रात 9:30 सुनोगे हिंदी नाटक छुट्टियां हो गई मां। भाग लैण वाले कलाकार होंगे विनोद तीर, सुनील जोशी, चमन अरोड़ा, सरिता तिवाड़ी, बांका बहादुर अरोड़ा, साध्या बसी, अरक्षित, यश ज्योति, ऋषभ गणेश ते जय भारती। प्रस्तुति गुरविंदर सिंह। रात 10:02 ते सुनोगे पंजाबी कवि गोष्ठी। भाग लैण वाले कवि होणगे सुरिंदर प्रीत कणिया, बलविंदर सिंह बालम, हरनेक सिंह कलेर ते मंगलदीप। रात 10:30 चंद गजलां समात फरमाओगे। हिंदी, पंजाबी ते अंग्रेजी खबरां आपो अपने समय मुताबक नशर कीतियां जाणगियां। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। ਲਹੁਣ ਸੁਣੋ ਸਮੂਹ ਗਾਨ।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। की तुसी रेडियो प्रोग्राम जां वधिया कंटेंट बनाउंदे हो? आकाशवाणी जलंधर तुहाडे लई लेके आया है एक सुनहरी मौका। प्रसार भारती अपनी नवी कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 दे तहत सारे प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोड्यूसर्स ते कंटेंट क्रिएटर्स तों वख-वख प्रोग्रामां लई अर्जियां दी मंग कर रहा है। तुसी रेवेन्यू शेयरिंग, स्पॉन्सर्ड जां गैटस मोड ते साडे नाल काम कर सकते हो। अपनियां अर्जियां जल्दी भेजो। बधेरी जानकारी लई अज ही आकाशवाणी जलंधर नाल संपर्क करो। अप्लाई करन दी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मुराद, नवी कार जितन दो मौका।
4: वाव, मैं पापा नो सरप्राइज देंगी, बस थोड़ी जी डिटेल पढ़नी है।
5: रुक जा मुराद,
6: कि अजे पॉपअप्स तो सावधान रहो,
7: स्कैमर्स निजी वेरवी आंदी दुर्वर्तो कर सकते हन।
5: ओ, तू समझ गई ना? ठंड रख।
4: कर कार जीत जान देता, पापा होमवर्क नहीं करांदे।
6: RBI कहंदा है स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क कर।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: जी बल साहब।
2: हाँ जी,
1: हुण तुहानू एक जानकारी दिंदे आ।
2: ठीक है जी।
1: है जी, बरसातां च सब्जियां दी काश्त।
2: अच्छा जी,
1: इस बारे जानकारी देणगे डॉक्टर दिलप्रीत तलवार।
2: सुनदे आ जी।
3: प्यारे किसान वीरो ते भैणो, सत श्री अकाल। अज असीं गल करांगे वर्खा रुत्त विच सब्जियां दी काश्त दे संबंध विच। पहलां वर्खा रुत्त विच गल करन तों पहलां आपां जाणदे हां कि सब्जियां दे मौसम किहड़े हुंदे ने। जिवें कि सानूं पता कि कणक झोने विच आम तौर ते हाड़ी अते सौणी दीआं सब्जियां, सौणी दीआं फसलां दे नाम ते जाणे जांदे आ। पर सब्जियां दे विच जेकर गल करीए तां तिन्न तरहां दे मौसम हुंदे ने। गर्मी विच लगण वाली सब्जी, वर्खा रुत्त विच लगण वाली सब्जी अते सर्दी रुत्त विच लगण वाली सब्जी। कणक झोने वांग जिवें इन्हां विच कणक झोने दी 6 महीने दी फसल है। सब्जी दी फसल नूं अक्सर 4 महीनों दी फसल मन्निया जांदा, जिहड़ी कि फरवरी दे विच फसल लगदी आ उसनूं गर्मी दी फसल बोलिया जांदा। ते उदों वी कई तरह दीआं सब्जियां लगदियां, जिवें कद्दू जाति दीआं फसल सब्जियां हो गईआं, जां उस दे नाल नाल अपणीआं भिंडी, टमाटर जां मिर्च हो गई। इसे तरह जेकर सर्दी की सब्जी की गल करिए जी, तो सर्दी की सब्जी अपनी अक्तूबर के लगती है, जी कि सितंबर अक्तूबर तो लैके फरवरी तक चलती है। जिमें जड़ां वाली सब्जियां हो गई, मटर हो गए, आलू हो गए। इस तरह तीजे जिहड़ा मेन सीजन है वह वर्खा रुत्त। वर्खा रुत्त विच लगन वाली सब्जियां बहुत अहम ने। जिमें कि वर्खा रुत्त विच आप अक्सर जानते हैं कि भिंडी एक वर्खा रुत्त की मेन फसल आ। वर्खा रुत्त विच जून जुलाई तो लैके जिहड़ी अक्तूबर तक फसल लग सकन, आप उन्हां दा झाड़ लै सकीए, आप सवा सब्जियां खा सकीए, घर विच बना सकीए, उगा सकीए, उसनूं वर्खा रुत्त दीआं सब्जियां आख्या जांदा। कद्दू जाति दीआं सब्जियां साल विच 2 बार लग जांदियां, जिवें कि एक पहलां लगदियां फरवरी मार्च विच। इसे तरह कद्दू जाति दीआं सब्जियां नूं आपां वर्खा रुत्त विच जून जुलाई दे विच ला सकदे हां। फर्क सिर्फ यही हुंदा कि वर्खा रुत्त दे विच कीड़े मकौड़े अते बीमारियां दा ज़्यादा आउंदियां, अते सानूं ओह किस्मां बीजणियां चाहीदियां जिहड़ियां इहनां दा टाकरा कर सकन। जेकर असीं फरवरी मार्च वाली गल करिए, गर्मी दे विच लगण वाली कद्दू जाति दीआं सब्जियां दी लाईए, तो उहदे विच आपां कोई भी किस्म नूं ला सकदे हां। उस समय सिर्फ लाल भुंडी दा खतरा हुंदा, होर कोई भी बीमारी जां कीड़ा इहनां ते नहीं आउंदा। पर जेकर वर्खा रुत्त विच गल करिए तां वर्खा रुत्त विच विषाणु रोग दा हमला बहुत ज़्यादा हुंदा, क्योंकि चिट्टी मक्खी अते तेला जिहड़ा कि इहनां नूं फैलाउण विच मदद करदा, उह वर्खा दे नाल नाल ज़्यादा आ जांदा, जिस कारण सब्जियां विच विषाणु रोग दा हमला हुंदा। उस विषाणु रोग नूं हमले तों बचाउण लई आपां नूं सिर्फ ते सिर्फ उसदी सही किस्म की चोण करनी जरूरी है। जेकर आप उसकी सही किस्म की चोण करके सही समय पर लगा दिता तो आप उसका मुनाफा भी वधिया कमा सकांगे, अते कीड़े मकौड़े ते बीमारियों तो उन्हां नूं बचा भी सकांगे। जेकर असी वर्खा रुत्त दीआं जिवें मुख फसलों बारे गल करिए, कद्दू जाति दे विच पहली फसल है हलवा कद्दू, जिहड़ी साल विच 2 बारी लगती है, फरवरी मार्च ते जून जुलाई। फरवरी मार्च में उस दीआं बहुत किस्म है, जिवें पंजाब सम्राट, PAU, मगज कद्दू 1 जां होर जिवें PPH 1 भी है। पर जेकर असीं वर्खा रुत्त विच गल करिए तां उस जून दे विच उसदा बीज जां जुलाई दे विच उसदा भी पंजाब नवाब किस्म है, जिहड़ी कि विषाणु रोग दा टाकरा करन दी समर्था रखदी है, ते इहदा झाड़ भी वधिया हुंदा। इहदा झाड़ 137 क्विंटल प्रति किले दे हिसाब नाल निकल आउंदा। पंजाब नवाब हलवा कद्दू दी बहुत ही वधिया अते वध फल देण वाली किस्म है, वर्खा रुत्त विच लगण वाली किस्म है। इहनूं आपां फरवरी मार्च विच नहीं ला सकदे, इहनूं सिर्फ ते सिर्फ जुलाई दे विच ही लाउणा। इहदा कारण इह है विषाणु रोग, जिवें आपां 4 साल पहलां करोना वायरस आया सी। करोना वायरस समय आपां कहिंदे सी जेकर वायरस वाले बंदे दा किसे नाल हत्थ मिला लिया जां उसदा कपड़ा टच करता तां उह वी हो जूगा। इसे तरह सब्जियां दे विच, बूटियां दे विच विषाणु रोग भी इदां, जेकर एक हत्थ लगे हुए बूटे ते विषाणु रोग ते लगे हुए नूं दूजे पासे लावांगे तां उहदे ते वी विषाणु रोग दा हमला हो जूगा। जेकर उहदा कोई फुल जां पत्ती भी दूजे फुल ते लगेगा जां पत्ते ते लगेगा तां उहते वी विषाणु रोग दा हमला हो जूगा। इस लई असीं कहिंदे कि सही किस्म दी चोण करो। जेकर किस्म तुहाडी गलत हो गई, विषाणु रोग आ भी गया, तां उसनूं रोकण दा सही ढंग यही है कि सब तो पहलां जिथे जिथे विषाणु रोग दा हमला होया वो बूट

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी अमृतसर ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। तुहानू याद करवा दिए कि अज साढ़े 9 बजे सुनोगे हिंदी नाटक छुट्टियां हो गई मां। हुण तो कुछ ही पलों विच यानी शाम 7:30 बजे सुनोगे पंजाबी खबरां।
4: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। औरतां दे क्रिकेट विच हरमनप्रीत कौर दी अगवाई वाली भारतीय टीम ने इतिहास रचिया। लॉर्ड्स विखे खेडे गए इक इक टेस्ट मैच विच मेज़बान इंग्लैंड नूं 270 दौड़ां नाल हरा के जित अपने नां कीती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क आवाजाई ते शाहराह मंत्री नितिन गडकरी ते उत्तर प्रदेश दे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अज लखनऊ कानपुर एक्सप्रैसवे दा उद्घाटन कीता। भारत ते जापान ने एक आजाद खुले ते नियम आधारित हिंद प्रशांत खेतर प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने जनतक खेतर दे बैंकां नूं प्रवासी भारतीयां NRIs तक अपनी पहुंच वधाउण अते नवें जमा रकम उत्पाद शुरू करन लई कहा है ते अमरीका अते ईरान दोवां वल्लों होरमुस पणजोड ते कंट्रोल दा दावा कीता गया है। हुण खबरां विस्थार नाल। औरतों के क्रिकेट में हरमनप्रीत कौर की अगवाई वाली भारतीय टीम ने अज लॉर्ड्स विखे खेडे गए एक एक टैसट मैच में मेज़बान इंग्लैंड 270 दौड़ों नाल हरा के इतिहासक जित हासिल की। भारत वालों दिए गए 457 दौड़ों के टीचे का पिछा करद्या मेज़बान टीम चौथे दिन दोपहर के खाने तो पहला अपनी दूजी पारी विच 186 दौड़ा बना के आउट हो गई। भारत लई स्नेह राणा ने 4 विकटा लिया जदों कि सियाली सतगड़े क्रांति कौड़ ते दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकटा लिया। भारत ने कल अपनी दूजी पारी 7 विकटा के नुकसान नाल 341 दौड़ा ते खत्म की जिस नाल इंग्लैंड 457 दौड़ों का टीचा मिलया। विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स के मैदान से टैसट सैकड़ा बनाने वाली पहली औरत क्रिकेट खिडारन बन गई है। भारत ने अपनी पहली पारी में 285 दौड़ा बनाईया सन जदों कि इंग्लैंड की टीम 170 दौड़ा से आउट हो गई सी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क आवाजाई अते शाहराह मंत्री नितिन गडकरी अते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अज लखनऊ कानपुर एक्सप्रैसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन तो पहला तिना नेतावान ने उनाओ विच एक्सप्रैसवे का निरीक्षण किया। फिर वह उसी एक्सप्रैसवे राही लखनऊ वापस आया तो सैनिक स्कूल विच एक प्रोग्राम विच शामिल होए। इस मौके करीब 4,850 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। इस मौके रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रैसवे के शुरू होने नाल उत्तर प्रदेश विच सनअतां दा होर तेज विकास होएगा।
5: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और

धागा मैंने तोड़ लिया, अपनी कठपुतली का धागा मैंने तोड़ लिया, अपने रास्तों को मैंने मोड़ लिया, मैं अब मन की करने लगी हूँ, मैं अब मन की करने लगी हूँ। विश्वास किसी पर मैं नहीं करती, विश्वास किसी पर मैं नहीं करती, किसी की बातों पर मैं नहीं चलती, मैं अब मन की करने लगी हूँ, मैं अब मन की करने लगी हूँ। कच्चे थे जो धागे उनको तोड़ लिया, नाता मैंने खुद का खुद से जोड़ लिया, नाता मैंने खुद का खुद से जोड़ लिया, मैं अब मन की करने लगी हूँ, मैं अब मन की करने लगी हूँ। मरने के लिए ज़रूरी है जीना, मरने के लिए ज़रूरी है जीना, मर मर कर जीना मैंने छोड़ दिया, मैं अब मन की करने लगी हूँ, मैं अब मन की करने लगी हूँ। अगली कविता, योद्धा। किसी ने नहीं कहा जीवन में युद्ध है अनवरत अंदर बाहर, किसी ने नहीं कहा जीवन में युद्ध है अनवरत अंदर बाहर, मुखरित रही भावनाएं प्रेम स्नेह लोभ मोह, पर युद्ध मुख्य रहा सदा, पर युद्ध मुख्य रहा सदा। किसी ने नहीं कहा मिट्टी का बुत नहीं योद्धा होना है तुम्हें, किसी ने नहीं कहा मिट्टी का बुत नहीं योद्धा होना है तुम्हें, वजूद की खातिर आसमान की खातिर जमीन की खातिर हक की खातिर, वजूद की खातिर आसमान की खातिर जमीन की खातिर हक की खातिर। किसी ने नहीं कहा बिना युद्ध कुछ नहीं मिलता, किसी ने नहीं कहा बिना युद्ध कुछ नहीं मिलता, अधिकार भी नहीं, कर्तव्य का पाठ पढ़ा छीन लिया जाता है हर हक, कर्तव्य का पाठ पढ़ा छीन लिया जाता है हर हक। किसी ने नहीं कहा योद्धा हो तुम, लड़ना है युद्ध सपनों के लिए, अपनों के लिए, अभिव्यक्ति के लिए, हंसी के लिए, सत्य के लिए, ज़रूरी है युद्ध, अभिव्यक्ति के लिए, हंसी के लिए, सत्य के लिए, ज़रूरी है युद्ध, और सत्य है योद्धा होना, और सत्य है योद्धा होना। अगली कविता का शीर्षक है युद्ध। युद्ध केवल युद्ध नहीं है, युद्ध केवल युद्ध नहीं है, युद्ध हत्या है मानवता की, युद्ध हनन है अधिकारों का, युद्ध संहार है मासूमों का, युद्ध केवल युद्ध नहीं है, युद्ध केवल युद्ध नहीं है, युद्ध विध्वंस है धरा का, युद्ध कत्ल है सपनों का, युद्ध अवरोध है उजाले का, युद्ध केवल युद्ध नहीं है, युद्ध केवल युद्ध नहीं है, युद्ध दमन है कल्पनाओं का, युद्ध कातिल है खुशहाली का, युद्ध टीस है मन की, युद्ध केवल युद्ध नहीं है, युद्ध रुदन है स्त्री का, युद्ध विलाप है मौत का, युद्ध आग है चिताओं की, युद्ध केवल युद्ध नहीं है, युद्ध केवल युद्ध नहीं है, युद्ध विनाश है वर्तमान का, युद्ध नाश है भविष्य का, युद्ध विनाशक है प्रेम का, युद्ध केवल युद्ध नहीं है, युद्ध अंत है सृष्टि का, युद्ध अंत है सृष्टि का, युद्ध केवल युद्ध नहीं है, युद्ध केवल युद्ध नहीं है। शनिकाओं के रूप में छोटी छोटी कविताएं। कठपुतली। कठपुतली का नाच दिखाता था मर्जी से अपनी नचाता था, कठपुतली एक दिन रूठ गई पिछली बातें भूल गई, धागे उसने तोड़ लिए। कठपुतली एक दिन रूठ गई पिछली बातें भूल गई, धागे उसने तोड़ लिए, सच से रिश्ते जोड़ लिए, कठपुतली अब कठपुतली ना रही, कठपुतली अब कठपुतली ना रही, अबला से सबला हो गई, अबला से सबला हो गई। अगली कविता, अमृत। कवि है वह, कवि है वह, उसके मन का जहर उसकी कविताओं में नहीं है, कवि है वह, उसके मन का जहर उसकी कविताओं में नहीं है, सच में अमृत होती है कविता, सच में अमृत होती है कविता। खतरनाक। जानवर से ज़्यादा होते हैं खतरनाक, जानवर

ज़्यादा होते हैं खतरनाक कुछ लोग महज इंसान नहीं होते, कुछ लोग महज इंसान नहीं होते। लिज लिजा, लुप्त हो रही रीढ़ की हड्डी, लुप्त हो रही रीढ़ की हड्डी, लिज लिजा सा एहसास, केंचुआ हो रहा इंसान धीरे धीरे, केंचुआ हो रहा इंसान धीरे धीरे। एतबार, एतबार का टूटना और सांस का टूटना एक सा लगा मुझे, एतबार का टूटना और सांस का टूटना एक सा लगा मुझे। जिंदा कहाँ रहता है इंसान, जिंदा कहाँ रहता है इंसान। खौफ, जमाने का खौफ मुझे था ही नहीं, जमाने का खौफ मुझे था ही नहीं। मैं तो डरती रही मन की आवाज़ से, मैं तो डरती रही मन की आवाज़ से। रंग, रंगों की पहचान नहीं थी मुझे, रंगों की पहचान नहीं थी मुझे। मैंने चुना भरोसे का रंग, रंगों की पहचान नहीं थी मुझे। मैंने चुना भरोसे का रंग, चलन में था धोखे का रंग, चलन में था धोखे का रंग। नेकियां, कोई उसे मृत घोषित ना कर सका, कोई उसे मृत घोषित ना कर सका, वह मरकर भी नहीं मरा। कोई उसे मृत घोषित ना कर सका, वह मरकर भी नहीं मरा। उसकी नेकियां आज भी जिंदा हैं, उसकी नेकियां आज भी जिंदा हैं। कसौटी, महज सच की कसौटी पर उतारा था मैंने, महज सच की कसौटी पर उतारा था मैंने। हर शख्स मेरी जिंदगी से निकलता चला गया, हर शख्स मेरी जिंदगी से निकलता चला गया। उसकी मौत का और मेरी मौत का इतना ही फर्क था, उसकी मौत का और मेरी मौत का इतना ही फर्क था। वह पल में मरा था और मैं पल पल मरा था, और मैं पल पल मरा था। कविता का शीर्षक है नदी उदास है, नदी उदास है, मुझ पर लग रहे हैं लांछन, नदी उदास है, मुझ पर लग रहे हैं लांछन। मैंने धर लिया रौद्र रूप, मैंने धर लिया रौद्र रूप, मैंने मचाया इतना उपद्रव, मैंने मचाया इतना उपद्रव। मैंने की कितनी हत्याएं, मैंने की कितनी हत्याएं, डूबते इंसान, बहते बेजुबान, ढहते घर, बेघर लोग, अनाथ बच्चे, बेवा स्त्री, अनाथ बच्चे, बेवा स्त्री, नाश प्रकृति का मुझ पर है इन सब का इल्ज़ाम, नाश प्रकृति का मुझ पर है इन सब का इल्ज़ाम। केवल मैं हूँ कसूरवार, केवल मैं हूँ कसूरवार, कटघरे में केवल मैं, कटघरे में केवल मैं। मैंने नहीं बदला कोई रास्ता, मैंने नहीं बदला कोई रास्ता, मैं चली अपनी राह सदा, मैं चली अपनी राह सदा। किसने की मेरी राह दुर्गम, किसने की मेरी राह दुर्गम, छीन ली मेरी स्वतंत्रता, है यह मुझे बंदी बनाने का नतीजा, है यह मुझे बंदी बनाने का नतीजा। सदियों से यही स्वभाव मेरा, सदियों से यही स्वभाव मेरा। मैंने नहीं बदले अपने मूल्य, मैंने नहीं बदले अपने मूल्य, यह है तुम्हारे चरित्र का ह्रास, मैंने नहीं बदले अपने मूल्य, यह है तुम्हारे चरित्र का ह्रास। मैं फिर भी हूँ उदास, मैं फिर भी हूँ उदास, चुकाया तुमने कर्मों का मूल्य मगर नदी उदास है, चुकाया तुमने कर्मों का मूल्य मगर नदी उदास है, नदी उदास है। अगली कविता नज़र, जमाना कितना तंगदिल और खुदगर्ज़ हुआ है, जमाना कितना तंगदिल और खुदगर्ज़ हुआ है। जिसकी नज़र उतारी मैंने बरसों, आज उसे ही मेरी नज़र से डर लगता है, जिसकी नज़र उतारी मैंने बरसों, आज उसे ही मेरी नज़र से डर लगता है, डर

और दोस्तों आगाज करते हैं प्रोग्राम जिंदगी हसीने दा। दोस्तों जिंदगी एक अजिहा सफर है जिथे कदे धुप मिलती है तो कदे छां मिलती है, कदे खुशियां दे मेले लगते ने तो कदे गमां दे हनेरे घेर लेंदे ने। पर ये सारे सफर विच जो एक चीज सानू कदे डिगन नहीं दिंदी, कदे मायूस नहीं होण दिंदी, जो हर रोज सवेरे उठ के एक नवी शुरुआत करन दा हौसला दिंदी है, वो है उम्मीद। जी हाँ, उम्मीद कोई शब्द नहीं बल्कि एक अजिही ताकत है जो डुबदे हुए सूरज नू वेख के भी यह विश्वास जगाउंदी है कि कल एक नवा सवेरा जरूर होएगा। तो दोस्तों कई बार हालात इस तरह के बन जाते हैं कि लगता है कि सारे रस्ते बंद हो चुके ने, पर इतिहास गवाह है कि दुनिया के सब तो वड्डे बदलाव अते सब तो वड्डियां कामयाबियां सिर्फ एक छोटी जही उम्मीद की किरण सदका ही संभव हुई है। इस करके सानू कदी भी उम्मीद नहीं छड़नी चाहिए। जो तक साढ़े मन में जितने संघर्ष करन दी अते अगे वधन दी आस जिंदा है,

दुनिया की कोई भी मुश्किल सानू हरा नहीं सकती। तो दोस्तों प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत गीत के नाल जिस नू लिया गया है फिल्म कर्मा तो। इस गीत नू गाया है अनुराधा पोटवाल ते अनवर ने।

0: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लगदी है, मुबारक फेरते। पर किते उना ने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गल तां नहीं कही? जे कही है तो फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि आजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगदे।
1: आकाशवाणी जलंधर ते सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। प्रोग्राम विच अगली पेशकश ये गीत फिल्म दिल है की मानता नहीं, तो इस गीत नु गाया अनुराधा पौडवाल ते कुमार सानू ने।

दोस्तों आकाशवाणी जलंधर से सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है और प्रोग्राम विच आज असी गल कर रहे हैं उम्मीद दी कि सानू उम्मीद दा पल्ला कदे नहीं छड़ना चाहिए जे अज वक्त थोड़ा औखा है तो याद रखियो कि वक्त दी सब तो खूबसूरत गल यही हुंदी है कि ये बदलदा जरूर है। अपने आप ते हमेशा भरोसा रखो, मेहनत करते रहो ते हमेशा आशावादी बने रहो, हमेशा सकारात्मक सोच दे नाल अग्गे वधदे रहो ते सब तो वड्डी गल अपने आले दुआले अपने सगे संबंधियां अपने यारा दोस्तां एक दूजे दा हाथ फड़ के चलिए, एक दूजे नूं हौसला देईए क्योंकि उम्मीदां दे दीवे बाल के ही समाज विच्चों निराशा दा हनेरा दूर किया जा सकता है। प्रोग्राम नूं अग्गे वधाउंदे हां दोस्तों, गाना भी तुहानूं सुणावांगे लेकिन किसी शायर ने बड़ी वधिया गल कही कि डिग के संभलना अते हौसले दे ना। दोस्तों किसी ने बहुत सोहनी गल कही है कि उम्मीदां दे दीवे तूफाना विच ही बलदे ने, जो हिम्मत नहीं हारदे ओही इतिहास बदलदे ने। जी हाँ दोस्तों, हमेशा उम्मीद दा दीवा बाल के रखो, हिम्मत रखो ते अग्गे वधदे रहो। आओ असी प्रोग्राम नूं अग्गे वधाउंदे हां ते प्रोग्राम विच अगला गीत लव फिल्म तो इस गीत नूं गाया SP बाला सुब्रमण्यम ते चित्रा ने।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: आकाशवाणी जलंधर ते सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। प्रोग्राम विच अगला गीत मेरी जंक फिल्म तो। इस गीत नु गाया लता मंगेशकर ते नितिन मुकेश ने।

जी हाँ दोस्तों, जिंदगी वाकई हर कदम एक नवी जंग है। हर वक्त सानू वो जंग लड़के अग्गे वधना पैंदा है। और जिंदगी विच कई बार दोस्तों अजिहे मोड़ भी आ जाते हैं।

कविता कृष्णमूर्ति, मनोहर दास ते सुखविंदर दे गाए सौदागर फिल्म दे गीत नाल ही अज दा प्रोग्राम जिंदगी हसीन है इत्थे ही खत्म करन दी दिओ इजाजत। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसीं साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। असीं तुहानूं याद करवा दिए कि अज रात 9:30 बजे सुनोगे हिंदी नाटक छुट्टियां हो गई मां। इस नाटक नूं भाग लैण वाले कलाकार ने विनोद तीर, सुनील जोशी, चमन अरोड़ा, सरिता तिवाड़ी, बांका बहादुर अरोड़ा, साध्या बस्सी, अरक्षित, यश ज्योति, रिशभ गणेश ते जय भारती। ते हुण तो कुछ ही पहलां विच यानी रात 9:45 बजे साढ़े दिल्ली केंद्र तो सुनोगे समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ एट 9 ते रात 9:15 बजे सुनोगे स्पॉट लाइट।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फु कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास

0: बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4N को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। ये कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3-लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
3: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के

0: वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
2: Provisionally, we're looking at a 10% increase.
3: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4,000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4,418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
2: अदर ऑपरेटिंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड।
1: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: नागालैंड के चुमो केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध आईईडी विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपेन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
5: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी हमलों की निंदा करते हुए अमरीका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है।

0: ward off any threats towards supply chains that are arising.
1: Ambassador Dayal, you gave us a very lucid explanation of the ongoing conflict and you delved deep into the reasons behind it and the future that is going to be from this conflict henceforth. Thank you so much for sparing your valuable time and joining us for Spotlight tonight.
0: Thank you, Deeksha. Thank you so much for inviting.
2: You were listening to a discussion on West Asia crisis, evolving situation and global impact. The participants were Prabhu Dayal, former ambassador, and Deeksha Saxena, Akashvani correspondent.
3: मीडियम वेव 347.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी अमृतसर ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। रात ते साडे नौ बज चुके ने, आओ हुण सुणदे हिंदी नाटक छुट्टियां हो गई मां। यह नाटक रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी ते आधारित रेडियो नाटक रूपांतर है। भाग लैण वाले कलाकार ने विनोद धीर, सुनील जोशी, चमन अरोड़ा, सरिता तिवाड़ी, बांका बहादुर अरोड़ा, साध्या बस्सी, अरक्षित, यश ज्योति, ऋषभ गणेश ते जय भारती। प्रस्तुति गुरविंदर सिंह।

द होमकमिंग पर आधारित है। वह रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी, इसमें एक 14 वर्ष के बालक के मनोभावों का वर्णन है जो बचपन और किशोरावस्था के चौराहे पर खड़ा है। बचपन का भोलापन समाप्त हो चुका है और गले की मिठास फटे बांस की आवाज़ में बदल चुकी है। बेतुकी, बचकानी और फालतू बातों पर उसे फटकार पड़ती है और बुद्धिमान होने का दर्जा अभी उसे मिला नहीं है। ना वो अब शिशु में है, ना ही पूरी तरह वयस्क अधर में लटकता। फिर भी अकड़ इतनी कि नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता, परंतु यह कोई दोष ना होकर बढ़ती उम्र की प्रवृत्ति है। माँ बाप और रिश्तेदार अक्सर उसको उदंड और बदतमीज समझते हैं और अनादर की हद तक नकारते हैं। तो प्रस्तुत है हिंदी में नाटक छुट्टियां हो गई माँ।

0: नदी का बहाव बहुत तेज हो गया है रघु, और पाट कितना चौड़ा। कभी कभार कोई नाव दिखाई देती है।
1: नाव कभी कभार ही नजर आएगी, कौन डूबने का खतरा मोल ले पाठक भाई।
2: बिल्कुल, तुमने ठीक कहा रघु। पिछले वर्ष इन्हीं बारिश के दिनों में जो नाव डूबी थी, ना उसका कोई सुराग मिला और ना ही सवारियों का।
0: हाँ मोहन, नदी के उफान के कारण असित सेन चाचा ने लकड़ी का व्यापार रोक रखा है। उसका ये लकड़ी का गट्ठा तभी तो अभी तक यही किनारे पड़ा है रघु।
1: क्यों ना इसे नदी में धकेल दे, बड़ा मजा आएगा असित सेन को गालियां निकालते सुनकर।
2: गालियां निकालते हुए जो वो शक्लें बनाता है ना, उसे देख के बड़ी हंसी आती है।
0: तो फिर धकेलो, आओ आओ जोर लगा के।
3: अबे रुको
2: पाठक, तुम्हारा छोटा भाई माखन।
1: क्यों धकेल रहे हो इसको? तुमसे मतलब बताता हूँ, मतलब रघु बताता हूँ। लो, मैं बैठा हूँ गट्ठे के ऊपर, अब धकेल के दिखाओ।
0: छोटा भाई होने के कारण लिहाज कर रहा हूँ तेरा मैं माखन। चुपचाप नीचे उतर जा, वरना
1: वरना वरना क्या,

0: हमारे खेल में टांग मत उड़ाओ। मैं चेतावनी दे रहा हूँ, नीचे उतरो।
1: ये खेल नहीं गुंडागर्दी है, नहीं उतरूंगा।
0: तो ठीक है रघु, मोहन जाने दो माखन गोभी गट्ठे के साथ ही नदी में।
2: उतर जाओ माखन, क्यों हमारा मजा किरकिरा करते हो।
1: नहीं उतरूंगा, कभी नहीं।
0: ये ऐसे नहीं उतरेगा, जूतियाँ खाएगा तब उतरेगा। ये ले, ले, ये ले, अब उतर, उतर, उतरेगा या नहीं बोल।
1: नहीं उतरूंगा, जितना मर्जी मार लो, ये नहीं उतरूंगा।
0: ले और ले, उतर नीचे, उतर।
3: पाठक मारना बंद करो, वो नीचे गिर गया है।
1: पाठक जो तू ये टोली लेकर गांव का बदमाश बनता है ना, बताता हूँ माँ को जाके। अजीत सेन के गट्ठे को नदी में ठेलने वाले तुम लोग कौन हो? कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग?
2: अब क्या?
0: छोड़ो यार, गट्ठे वाली बात छुपी ना रहेगी। असित सेन माँ से शिकायत करेगा और नुकसान की भरपाई मांगेगा। माँ मुझ पर बरसेगी।
4: अरे बच्चों सुनो,
3: ये कौन है? कभी देखा तो नहीं?
5: गांव का तो नहीं लगता, कोई बाहर का ही है।
4: अरे बच्चों, चक्रवर्ती परिवार का घर पता है किधर है?
0: हाँ वो उधर, वो उधर,
4: उधर
0: नहीं नहीं, इधर इधर, इधर
4: इधर।
0: अरे बाएं बाएं
4: बाएं,
0: नहीं नहीं दाएं दाएं दाएं।
4: अरे भाई एक दिशा बताओ ना, चारों तरफ हाथ घुमाओगे तो कैसे पता चलेगा? तो क्यों बेवकूफ बनाते हो, उम्र का भी लिहाज नहीं, कमाल है।
0: हमें नहीं पता, पूछ लो आगे जाकर।
4: तो यूं कहो ना कि पता नहीं है, इतनी उदंडता शिष्टाचार ही नहीं।
0: हाँ हाँ नहीं है शिष्टाचार।
4: अरे जाहिल कहीं के,
0: हम जाहिल हैं, जाहिल हैं, हम जाहिल हैं,
6: हम जाहिल हैं, जाहिल हैं, हम जाहिल हैं, हम जाहिल हैं, जाहिल हैं, हम जाहिल हैं।
4: पाठक, पाठक बाबू घर चलो, माँ ने बुलाया है। कहाँ है? तुरंत लेकर आओ।
0: आता हूँ, तुम चलो भोला।
4: पाठक माँ ने कहा है, ना माने तो उठा कर ले आना, चुपचाप मेरे साथ चलो।
0: माखन ने कान भरे होंगे, टसुए बहाए होंगे माँ के सामने।
4: रोता हुआ आया था, अभी तक रो रहा है।
0: चलो भोला,
4: चलो।
1: शर्म नहीं आती तुम्हें पाठक, अपने छोटे भाई को इस तरह मारते हुए? हर रोज तुम्हारी कोई ना कोई शिकायत, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, पढ़ना लिखना छोड़कर बदमाशी पर उतरे हुए हो तुम।
0: और तुम्हारा ये लाडला माखन कोई कम नहीं है, मेरे मित्रों के सामने मेरी नाक काटने की कोशिश करेगा तो जूतियां ही खाएगा।
1: मुंह ना नोच लूं उसका जो मुझे जूतियां मारेगा।
0: देखा देखा माँ, ये इज्जत है बड़े भाई की, इसको तो करता हूँ मैं सीधा। लगता है जूतियां खाकर पेट नहीं भरा।
1: खबरदार जो माखन पर हाथ उठाया।
0: हटो माँ, इसको तो मैं सबक सिखाता हूँ।
1: देख लो माँ, मैंने कोई झूठ कहा था? पाठक तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, पूरे 14 साल के हो, इतनी उदंडता ठीक नहीं बच्चे।
0: हटो माँ, बीच में मत पड़ो।
1: शर्म नहीं आती माँ को धक्का मारते?
0: हटो माँ, हटो।
1: पाठक,
4: क्या महेंद्रनाथ चक्रवर्ती का घर यही है?
7: जी हाँ, कही, किससे मिलना है?
4: अरे सरिता, अरे मैं विशंबर, तुम्हारा भाई, पहचाना नहीं?
7: अरे दादा, तुम का भाई? 25 वर्ष हो गए तुम्हें मिले, कैसे रहे विदेश में? भाभी कैसी है, बच्चे?
4: अरे बहना रुको, सांस तो लेने दो, बताता हूँ। भाभी ठीक है और बच्चे 4 हैं।
7: रहोगे ना 2-4 महीने?
4: विदेश छोड़ दिया हमेशा के लिए, कलकत्ता आ गए हैं सभी। बहना, जीजा जी के स्वर्गवास होने का पता चला, मन बहुत दुखी।
1: पाठक, माखन इधर आओ, मामा के पांव छुओ। भोला, दादा के लिए नाश्ते का इंतजाम करो भाई।
4: अरे जीते रहो, खुश रहो। अरे इस बड़े वाले को तो मैंने देखा है नदी के घाट पर। बहना,

0: ये क्या हाथापाई हो रही थी माँ बेटों में?
1: जब से तुम्हारे जीजा जी की मृत्यु हुई है, ये बड़ा पाठक तो हाथ से निकल रहा है। पढ़ाई लिखाई छोड़कर सारा दिन नवारा गर्दी करता है।
0: क्या
1: ढीठ और उदंड हो गया है, पता नहीं क्या बनेगा इसका। एक बार तो पंचायत से माफी मांग चुका है, बस अब थाना कचहरी रह गया।
0: बहना, बाप का साया सिर से उठ जाए ना तो यही सब कुछ होता है। बच्चे अक्सर हाथ से निकल जाते हैं। सोचता हूँ मैं इसे अपने साथ कलकत्ता ले जाता हूँ, कोई तो चाबुक रहेगा इसके ऊपर, वही पढ़ेगा। क्यों पाठक, चलोगे मेरे साथ कलकत्ता?
2: जी जी मामा, चलूंगा। सुना है कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है और सुंदर भी।
0: हाँ हाँ, तो ठीक है, कल दोपहर को ही चलेंगे।
2: जी
1: दादा, इतनी जल्दी? मैंने तो तुम्हें अच्छे से देखा भी नहीं।
0: अरे बहना, वहाँ तेरी भाभी बच्चों के साथ परेशान होती होगी, हम जल्दी आएंगे परिवार समेत।
2: देख माखन, माँ को मेरी कमी महसूस ना होने देना, ख्याल रखना उसका। और हाँ, मेरे कंचे और पतंगे वगैरह और फुटबॉल लट्टू और मछली पकड़ने वाली बंसी भी, सब तेरा।
0: चलो पाठक, देर हो रही है।
2: अच्छा माँ, चलता हूँ, अपना ध्यान रखना और मुझे भूल मत जाना।
1: वहां तमीज से रहना और मामा मामी को तंग ना करना, शिकायत ना आए तेरी।

0: मुन्नू के बापू, तुम काहे को पाठक यहाँ उठा लाए? 3 महीने हो गए हैं उसे यहाँ आए। कोई दिन है जिस दिन स्कूल वालों ने कोई ना कोई शिकायत ना की हो?
1: वो तो ठीक है मथुरा रानी, पर बहन की परेशानी भी कहाँ देखी जाती थी। इस लड़के ने उसका जीना हलकान कर रखा था। तुझे बताया तो था, कभी एक से झगड़ा, कभी दूसरे से मार कुटाई।
0: और यहाँ क्या मैं हलकान नहीं हो रही? हमारे बच्चों के साथ उसका व्यवहार तो तुमने देखा ही है। हमारे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है पाठक का। यहाँ जो उसने उद्धम मचा रखा है उसका क्या? छीना झपटी, मार कुटाई, गाली गलोच और सारा दिन क्या होता है घर में?
1: मैं सारी परेशानी समझता हूँ मथुरा रानी। किसी तरह 3 महीने तो निकाल नहीं होंगे। दिसंबर की छुट्टियों में पाठक को मैं गांव छोड़ाऊंगा।
0: कह देती हूँ, इन 3 महीनों में अपने बच्चों की पढ़ाई का सत्यानाश हो जाएगा। और रुपए पैसे की तंगी सो अलग, 6-6 रोटियां तोड़ता है तीनों समय, और ऊपर से रात को दूध, वरना श्रीमान को नींद नहीं आती। अपने बच्चों को चाहे मिले या ना मिले, और फिर कभी किताब गुम, कभी कॉपी। दूसरों के बच्चे पालने का ठेका हमने थोड़ा ही ले रखा है।
1: अब ऐसा तो ना कहो मथुरा, बेगाना थोड़ी ही है, सगी बहन का बेटा है। छुट्टियों से पहले अब मैं कुछ नहीं कर सकता, सबर संतोख तो रखना ही पड़ेगा मथुरा। मैं सगा भाई हूँ, सौतेला नहीं।
0: जानती हूँ सौतेले नहीं हो, पर चादर देख कर पाँव पसारे जाते हैं। इन 2 कमरों वाले मकान में 7 आदमी रहेंगे तो अपने बच्चों का भविष्य तो हो गया ना अंधकार में। कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ सोएंगे? सारी कमाई लगाकर मकान खरीदा, ये तो सराय बन गया। देख लो, ये भी कोई रहने ना आया हो।
1: तुम भी बस मथुरा, देखता हूँ। अरे तुम पाठक, क्या हुआ? स्कूल से अभी वापस आ गए, और वो भी इतनी तेज बारिश में? अरे छुट्टी होने में तो अभी काफी देर है भाई।
2: मामा मुझे बुखार है, टीचर ने कहा घर चले जाओ।
1: देखो

0: पाठक, मेरे रोकने पर भी कल भी तुम बारिश में स्कूल गए, वापिस आए भीगते हुए, रास्ते में गिरे और बेहोश हो। वो तो नेक दिल सिपाही था जो तुम्हें घर छोड़ गया, और आज फिर तुम नहीं टले स्कूल जाने से।
1: मुझे घर जाना है माँ के पास, मुझे गांव छोड़ाओ मामा, माँ के पास।
0: हाँ हाँ बेटा, छुट्टियों में चलेंगे, अभी तो तुम्हें काफी तेज बुखार है। चलो चलो, आओ तुम अंदर लेटो, मैं डॉक्टर से दवा लेके आता हूँ।
2: ये लो, एक और मुसीबत खड़ी हो गई। आगे ही तंगी चल रही है और ऊपर से डॉक्टर और दवाइयों का खर्चा, खिचड़ी और दलिये के लिए अलग से चूल्हा फूंकना पड़ेगा।
1: मामी मामी, थोड़ा पानी दे दो, गला सूख रहा है।
2: ये लो, अब नर्स बनकर घूमो इसके आसपास, कभी पानी, कभी चाय, कभी दवाई।
1: माँ माँ, मुझे ले जाओ यहाँ से, तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करूंगा।
2: अरे पाठक, क्या हुआ पाठक? पाठक,
1: हाँ।
2: ये तो बेहोश हो गया लगता है।
1: माँ,

0: अजी सुनो, 3 दिन हो गए डॉक्टर का इलाज चलते, हालत पहले से भी खराब हो गई है। इसकी माँ को बुला लो, सरिता के आने से ये शायद अच्छा हो जाए।
1: आज सवेरे ही मैंने आदमी भेज दिया है उसे लिवा लाने के लिए, सरिता आज ही पहुंच जाएगी।
2: माँ, माँ मुझे घर ले चलो, मैं छुट्टियों तक यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जाना है वापस घर।
0: इसकी हालत तो काफी गंभीर लगती है, डॉक्टर को बुला लो, मुझे चिंता हो रही है।
1: सवेरे आया तो था डॉक्टर, बार बार फीस देने का क्या फायदा। उसका कहना है कि इसकी माँ आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा।
2: क्या क्या छुट्टियां शुरू हो गई माँ? माँ माँ मैंने मैंने घर जाना है।
3: दादा दादा, क्या हुआ पाठक को?
1: बहना, 3 दिन से बुखार है बहुत तेज, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। डॉक्टर घर पर आकर भी देख के गए हैं बहना, दवाई भी समय पर दे रहे हैं, पर
3: पाठक पाठक देखो देखो, मैं हूं तुम्हारी माँ। आंखें खोलो पाठक, आंखें खोलो।
2: माँ,
3: हाँ,
2: मुझे घर जाना है माँ।
3: हाँ, हाँ, चलो चलेंगे बेटा।
2: छुट्टियाँ हो गई माँ, छुट्टियाँ छुट्टियाँ हो गई माँ।
3: पाठक,

फिल्म उस्तादी उस्ताद से तुम। इस गीत नु गाया लता मंगेशकर ते उषा मंगेशकर ने, संगीत दिता है राम लक्ष्मण ने, ते गीत नु लिखिया है दिलीप ताहिर ने। आओ सुनते हैं गीत।

आओ हम सुनते एक और हिंदी गीत। एक गीत लिया गया है जी फिल्म आक्रमण, तो इस गीत नू गाया है किशोर कुमार ते लता मंगेशकर ने, संगीतबद्ध कीता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, ते इस गीत नू लिखया है आनंद बख्शी ने।

0: ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਤੇ ਰਾਤ 11:05 ਤੇ ਸੁਣੋਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ੀ। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनके अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73.45 अरब डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मूज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मूज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फूकवॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं जबकि 6 अब भी लापता हैं। राज्य के मत्स्य मंत्री राजेश महतो ने कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाज और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 19 में

सो बिल्कुल जी, किसे नु की आखिए मलाह पई मार सी की था जगन ने छत्र गिल साहब की आवाज़ से बैठे प्रोग्राम सुगात चल रहे जी। और मैं थोड़ा दोस्त अरुण इस वे थोड़े नाल पढ़िया होया ते व्हाट्सएप मैसेजेस साढ़े को लगातार दोस्तों के आ रहे हैं। सो अगला मैसेज साढ़े तक पहुँचा है जी कनेरा मोहल्ला पटियाला तो भेजा है मुकेश पत्ता जी ने। इन्हों के नाल ने जी नीलम पत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक ते वंश पत्ता। तो इस नाल ही एक मैसेज साढ़े तक होर पहुँचा है जी। मैसेज आया है साढ़े को सरहिंदी बाजार पटियाला तो भेजा है प्रेम कुमार रहेजा जी ने। इन्हों के नाल जी कांता राणी, चरण रहेजा, डैनी, नीतू, ज्योत ते सजनी। तो आओ जी फिर इन्होंने दोस्तों की फरमाइश से सुनते हैं प्यारा जहा गीत हरजीत हरमन साहब की आवाज़ के।

सो दोस्तों, अगला मैसेज साढ़े तीन पहुँचा है जी। नीदरलैंड तो रविंदर पाठक जी ने भेजा, और इन्हें नाल जी आशा पाठक जी, और बहुत एक प्यारा जहा मैसेज हर बार की तरह इन्हों का मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर थानू इस मैसेज के लिए, तो थोड़ी फरमाइश जी तुम्हें की है वो भी मैं जरूर पूरी कराँगा कुछ समय के बाद। रविंदर गरेवाल साहब की आवाज़ में कोई अच्छा जहा गीत मैं थोड़े लिए प्ले कराँगा, पर उस तो पहला असं सुनते हैं जी एक प्यारा जहा गीत गुरदास मान साहब की आवाज़ के, वो भी स्पैशली पाठक साहब तुम्हें ही डेडिकेटेड है।

सो बिल्कुल जी, दूर प्रदेश के गीत एंजॉय कर रहे थे, गुरदास मान साहब की आवाज़ से बीते प्रोग्राम चल रहे जी। सौगात तो मैं थोड़ा दोस्त अरुण इस वेल्ले थोड़े नाल बनया हुआ। सो साडा व्हाट्सएप नंबर है जी 9465536077, यानी कि 9465536077। सो इस नंबर पर तुम अपने पसंदीदा गीतों फरमाइशा भी कर सकते हो, तो जेकर फरमाइश नहीं भी कर रहे तो प्रोग्राम सुन रहे हो तो मैसेज भेज के सानू दस सकते हो भी असी प्रोग्राम सुन रहे हैं। सो अगला मैसेज साढ़े तीन पहुँचा है जी ग्रीन पार्क कपूरथला तो, भेजा है किरण नरूला जी ने, और फस्ट टाइम कहते हैं भी असी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं नवे स्रोते ने, तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी थोड़ा प्रोग्राम सौगात विच। तो सतेंद्र सरताज साहब की आवाज़ में इन्होंने गीत की फरमाइश की है, तो आओ जी फिर इन्हों की फरमाइश तो सुनते हैं प्यारा जहा गीत।

सब गावो गुण गोविंद हरे, गोविंद हरे, गोविंद हरे, गुण गावत गुणी समावला। हे सृष्टि दे जीवो, ओस गोविंद प्रभु दे गुण गायन करदे रहो, जो ओस दी कीर्ति विच ही समाया होया है। ए फरमान चौथे पातशाह साहेब श्री गुरु रामदास जी द्वारा उचारी हुई राग कानड़े दीवार विच श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी दे अंग 1315 दे शोभनीक है। इसे करके साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे ने कि मैं भी सब कुछ विसार के दिन रात सास सास प्रभु जी आप जी दे गुण गायन करदा रहा, क्योंकि सतपुरशां दी संगत विच मैनू ए विश्वास दृढ़ होया है कि प्रभु दा नाम ही आद तो अंत तक सहाई है, ते प्रभु ही जीव दे सदैव अंग संग है। राग आसा विच फरमान है, दिन पी गावाओ रैनी गावाओ, गावाओ सास सास रसनारी, सत्संगत मह बिसास होए हर जीवत मर्द संगारी। इस शब्द गायन कीता है भाई दर्शन सिंह कोमल ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: दिन पी गावो रैनी गावो गावो सास सास रसनारी सत्संगत मह बिसास हुए हर जीवत मर्द संगारी। इस शब्द अगायन कीता सी पाई दर्शन सिंह कोमल ते उना दे रागी जत्थे ने। ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होरत किता जिचर हर रस पलै न पाए। श्री गुरु अमरदास जी मनुख नू सुचेत करदे ने कि ऐ मनुखी जीव दी रसना तू होरना होछे रसा पिछे गलतान ना हो। इस नाल तेरी तृप्ति नहीं होनी, प्यास नहीं बुझनी जद तक हर रस पल्ले नहीं पैंदा। इसे करके पंचम पातशाह भी राग सारंग विच उचारित शब्द विच साड़ी अगवाई करदे हुए जुगत दर्शाउंदे ने। रसना राम को जस गाओ आन स्वाद बिसार सगले पलो नाम सुआओ। ए वार्ता सुना रहे ने प्रभ कीर्तन सिंह।
1: गुरबाणी दी ए पावन पंक्ति पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दे सारंग राग विच उचारे होए अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पन्ना 1220 ते अंकित शब्द विच्चों है। ए पंक्ति रहाओ दे बंद विच्चों है। पूरा बंद इस तरह है, रसना राम को जस गाओ आन स्वाद बिसार सगले भलो नाम सुआओ रहाओ। असी अपने जीवन विच कीते जाण वाले सारे कम्मां नू दो हिस्सों विच वंड सकते हैं। एक ओ जो करन नाल असी अपने जीवन नू सफल करन दे रस्ते उत्ते अग्गे वध रहे हुंदे हां अते सारे कम किसे ना किसे ढंग नाल सानू सफल होण दे योग बना रहे हुंदे हां। पर कुछ होर कम अजिहे भी हुंदे हां जो इस रस्ते दी रुकावट बन रहे हुंदे हां जां साडा समां निरारत गुआ रहे हुंदे हां। गुरमत विच एक सिख दे जीवन दा मंतव अकाल पुरख नाल एक मिक हो जाना दस्या गया है अते इस दी प्राप्ति दा रस्ता प्रभु दे गुण गाउणा, प्रभु नाल प्रीत पाउणा, प्रभु दी प्रीत दी अवस्था विच उस दे गुण गाउंदे होए उस दे गुणा नूं धारण करदे होए उस वर्गे ही हो के उस विच समा जाणा है। इसे करके एक जग्यासु लई प्रभु दे गुण गाउंदे रहना एक जरूरी किरिया है जो हर जग्यासु दे जीवन दा अटुट अंग है। जो जीवन दे होर लुभावने पर व्यर्थ कम्मां नूं छड के करना बनता है। जीवन दी सफलता दे राह ते तुरना सिर्फ उदों ही मुमकिन हुंदा है जदों सानूं नाम सिमरन विच्चों मिलन वाला आनंद इन्ना चंगा लगन लग पैंदा है कि बाकी दे व्यर्थ कम फिर चंगे ही नहीं लगते। फिर मनुख अजिही अवस्था ते पहुँच जाता है कि मन कहिंदा है मन मेरे सुख सहज सेती जप नाओ आठ पहर प्रभ ते आए तू

रायन नरपत नमस्कार है, ऐसे गुरकाओ बल बल जाइए, आप मुकत मोहितार है। इस शब्द का गायन कीता सी

की लाज। सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो, बले छलन सबल मलन भक्त फलन कान कोरे, नेक लंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो। राम रवन तुर दमन सकल पमन कुशल करन, सर्व पूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनंद जियो। जरम करम मछ कछ हो।

0: अगम अनंत अनाद आद जस को न जाने शिव बिरंच तर ध्यान नित जस वेद बखाण निरंकार निरवैर अवर नहीं दूसर कोई पंजन गन समथ तरण तारण प्रभ सोई नाना प्रकार जन जग कियो जन मथुरा रस नारस श्री सत नाम करता पुरख गुरु राम दास चित्त है बस गुरु समरथ गह करिया त्रुव बुद्ध समत समारन को हुन त्रम तुझा फरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण को मथुरा जन जान कही जी साच सो और कसू न बिचारन को हर नाम बहुत बदो कल पव सागर पार उतारन को
1: संतत ही सत संगत संग सरंग रते जस गावत है त्रम पंथ तरयो तरनी तर आप रहे लिवतार न तावत है मथुरा पन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है रव के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है निर्मल नाम सुधा पर पूरण शब्द तरंग प्रगटित दिन आगर गैर गंभीर अर्थात बड सुपर सदा सभ्य रत्नागर संत मराल करै कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो।

0: कलयुग दुर्त दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर।
1: जिह सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन, जिह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जिह सतगुर सिमरंत जिय की तपत मिटावे, जिह सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निध पावे। सोई रामदास गुरु बलपन मिल संगत तन तन करो, जे सतगुर रग प्रभ पाया सो सतगुर सिमरो नरो।
2: जिन सतगुर से पदार्थ पायो निसबासुर हर चरण निवास, ताते संगत सगन पाए पौ मन है तुम लिया कर प्रगट सुबास। त्रू प्रहलाद कबीर तलोचन नाम ला तुप जो जो परगास। जह पिखत अत हुए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास। सतगुर खेमा ताने आजुग जूत समाने अन पौने जा नाम टेक जित भगत अगाने। गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने। एहो राज जोग गुर रामदास तुम हो रस जाने। हम अव गुण पर एक गुण नाही अमृत छाट बिखा बिख खाई। माया मोह परम पापुल सुत गासयो एक उत्तम पंथ सुन हो गुर संगत ते संत त्रास मिटाई। एक दास पाप कीरत की गुरु

की गुरु रामदास राखो सरनाई। सो कहो तल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए। होवा सिफत खसम दी नूर अरसहु कुरसहु चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया। सजन सच्चा पातशाह सिर साद

गनमाला तिलकुल नाटं दो धोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्म कर्म सफोकट नेचो कर्म कहो नानक नाचो पावे बिन सतगुर वाट न पावे।

जी साहिबा तहां अच्छे आरे आए तां देग तेग फतेह दर्द की पाए जो पंथ की जीत श्री साहिब जी सह।

पंडो हो दोस्ती पंडो चले राव पंड मुआ पंड पालिया पंड हो पंडा सो क्यों मंदा किए जित जमे राजान पंडो ही पंड उपजे पंडो बाज ना कोई नानक पंडो बारा को सच्चा सोय जित मुख सदा सलाई पाता रती नानक ते मुख जले तित सच्चे दरबार पौड़ी सब को।